0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: इसीलिए हम कहते हैं संकल्प क्यों करते हो, पता नहीं शाम तक जीवित रहें कि ना रहें, हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें। भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में हैं कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय नहीं शरीर सामर्थ्य रहे तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी, तो अब करना चाहिए। फिर देखो संकल्प पूरा करना चाहिए, तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे, और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 के
2: तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। ऐसे भक्ति मिले ऐसा तो कम ही होता है।
1: हाँ तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए, पर अगर समय के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा। मृत्यु लोक है और मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा एक मिनट का नहीं अपने शरीर का, कि एक मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे क्यों भाई, पक्का है किसी को पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो हम क्या संकल्प करें। हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे, परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे, करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, हमारा काम पूर्ण, स्वार्थी हो क्या। हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे, ये हमें बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए कोई बात नहीं, संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगो तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती हैं, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, पर अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना ये बात तो हमारे में भी है, इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक्के नाम जपने को नहीं हुआ, रात दिन मंत्र में नाम में लगे गए, रात दिन दसों वर्ष समीप रह के सेवा में रहे, तो देख बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक के नाम जपले को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा, यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो, यही भजन असली भजन का ही फल है। भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते, अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा, क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में वो भजनानंदी नहीं होता, जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था, और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ, तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं, वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें, जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर, इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो वैसा करने लगे तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा, इसे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं, एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं, तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक उनके पास गए और वो मदिरा पीते थे, वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्रानुष्ठान अशुद्ध मंत्र। एक साल ही हुआ कि मां भद्रकाली प्रकट हो गई काली और उनका बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका मां पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है। मां ने कहा तो उनका मां अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा, अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम एक साल में आ गई, कैसे आ गई। बोले बताने आई हूं कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका मां मैं अपने गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है, गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही, हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है। विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को, और अहंकार जब मिटिया मेट हो गया तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है, सबसे कठिन बात विश्व में समझ लो गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना। और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये हम खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी हैं जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए और दूर से उनको परब्रह्म मान के बिना निंदा किए उनके द्वारा बताई हुई उपासना में रत हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा, दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही कदम रख सकते हैं ऐसे हम जीवित हैं, परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं। किंचन मात्र कुछ नहीं, केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं, अगर वो ऐसे छोड़ दे तो धम्म से गिर जाए। गुरु कृपा ही केवल हम, गुरु कृपा है वो दैन्यता, गुरु कृपा से आती है। महाराज जी धन्य भाग है आपकी कि आप दैन्यता चाहते हैं। हाँ परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की, बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना, बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। हाँ, रुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल तार तार निर्मल हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। पर भगवान की तीन प्रकार की लीला है, एक है सृजन और एक है पालन और एक है संहार, और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं, तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशोदा मैया स्वयं भगवान लाला के रूप में आएला तो गौ की पूछ से झाड़ला, और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना, मेरा लाला कन्हैया सुरक्षित रहे, क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, तृणावर्त, घासुर, बकासुर, तो मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाए हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता ले, क्योंकि माँ है ना, उनको लगता है मेरा लाला है, तो बार बार वो परेशान हो जाती थी। और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया, केशव भगवान बाजू की रक्षा करे, ऐसे करे ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति ना हो। तो ये देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ है। अगर माँ तपस्या पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जे भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले हैं, वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तू मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है, अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। उनका मां ने कहा है, बच्चे हो कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ओ, ऐसे पत्ता लगा के से गांधारी ने जी आंख खोले ऐसे दे, उनका ये पत्ता क्यों लगा लिया? उनका मां, तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने, अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा, यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए, जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में ला जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा कर ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते, इसीलिए भगवान ने। तो मां में कितनी सामर्थ्य है, आप देखो अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से, नाम से परम गति होती है। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे, रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, ये पूरा पद। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा, आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा राधा नाम, तुम्हें चिंता नहीं करनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

स्वीकार करें स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। तो दोस्त लोग चलिए शुरुआत करें हम आज के प्रोग्राम के। आप बताएं रोज स्वास्थ्य का दिन कुछ घरेलू नुस्खा। तो सबसे पहले हमने के जानल जाई इस सुहाना मौसम में सुंदर त्वचा खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। दोस्त लोग हमने के संपूर्ण त्वचा रोम छिद्र द्वारा निर्मित होला। त्वचा प्रतिपल ई छिद्र के माध्यम से बाहर के वातावरण के संपर्क में रहेला व ऑक्सीजन विटामिन आदि के पूर्ति करत रहेला। कई प्रकार के रासायनिक तत्वों की पूर्ति त्वचा द्वारा ही होला, जिसमें प्रमुख विटामिन डी सूर्य द्वारा, ऑक्सीजन हवा द्वारा, मैग्नीशियम मैग्नीस धूलकण द्वारा, लोहा जिंक ब्रोमीन मिट्टी द्वारा। रासायनिक तत्व जल द्वारा स्त्री व पुरुष के त्वचा में अंतर होला और ई अंतर के कारण हार्मोन के स्त्राव में परिवर्तन होला। हार्मोन द्वारा मेलोनिन के स्त्राव त्वचा के सुंदर व मुलायम बनावे खातिर जिम्मेदार होला। त्वचा के आसान उपाय द्वारा चिकना व सुंदर बनावल जा सकेला। त्वचा खातिर ऑली ऑयल सबसे फायदेमंद तेल है। मालिश करे पर ई तेल सीधे आंतरिक त्वचा में जाके वहाँ उपस्थित तेल ग्रंथि के स्त्राव के बढ़ावेला, फलस्वरूप त्वचा धीरे धीरे मुलायम व स्वस्थ होके लगेला। कच्चा सलाद के ऊपर हल्का ऑलिव ऑयल डाल के मक्खन की तरह इस्तेमाल करे पर सीधे पेट में जाके वहाँ के पीएच वैल्यू के संतुलित करेला और त्वचा के स्वस्थ बनावेला। जब तिल की आग पर पकावल जाला तो उसमें उपस्थित विटामिन ई नष्ट हो जाला। यही विटामिन ई त्वचा में कसाव पैदा करेला, यही से कच्चा ऑली ऑयल अधिक फायदेमंद होला। अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग त्वचा के नुकसान पहुंचा सकेला। संपूर्ण शरीर पर ऑली ऑयल, गंधक नीम, चंदन व नमक से तैयार कैल गई मिट्टी के लेप त्वचा के ऑक्सीजन दर बढ़ा के त्वचा में कसाव पैदा करेला। त्वचा पर मिट्टी के लेप सबसे स्वस्थ व सुंदर उपाय है। हमेशा ताजा व गुनगुना जल से नहाए पर शरीर के 12 प्रकार के रासायनिक तत्व प्राप्त होला। उपस्थित हानिकारक रासायनिक तत्व के त्वचा स्वयं बाहर कर देवेला या शरीर उसके पसीना के द्वारा बाहर निकाल देला। स्नान से पहले घर्षण स्नान त्वचा के रोम छिद्र के खोल के उसके सशक्त व मजबूत बनावेला। कि स्नान करे पर त्वचा द्वारा पानी अधिक मात्रा में अंदर जा सके। स्नान के बाद तौली से शरीर के पोछे के ना चाहिए, शरीर के पानी ऐसे ही सूखे दी ताकि त्वचा पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी ले सके। आहार खून में लौह तत्व की मात्रा बढ़ा के त्वचा के कोमल बनावेला।
फल व कच्चा सब्जी सबसे फायदेमंद है। जैसे चुकंदर, गाजर, लीची, शहद, खीरा,

0: सुंदर त्वचा खातिर कुछ उपाय। तो चली अब बता दी कि भोजन में पौष्टिकता कैसे बढ़ा सकत हनी। हमनी के खान पान के लेके का कुछ नई खीसन करत, लेकिन वास्तव में जरूरत ई बात के अधिक होला कि हम जौन कुछ प्रतिदिन सेवन कर रहल बानी ओके पौष्टिकता बढ़ावे के जतन करी। चलिए हम कुछ ऐसा रोचक तत्व बतावे जात बानी जौन हमनी के भोजन के पौष्टिकता और स्वाद दोनों के बढ़ा सकेला। सेहत और सुंदरता दोनों खातिर ई जानकारी बहुत उपयोगी बा। दोस्तों कारोवे जानतनी कि खाए पिए के चीज में शुगर के कितना मात्रा होके के चाहिए। कि 200 मिलीलीटर कोला में लगभग 22 ग्राम शक्कर होला, जबकि इतना ही चॉकलेट सोया मिल्क में 10 ग्राम शक्कर होला। मार्केट में मौजूद स्पोर्ट्स ड्रिंक के 200 मिलीलीटर कप में 21 ग्राम शक्कर होला। इंस्टेंट शुगर से मीठी चाय के 200 मिलीलीटर मात्रा में 21 ग्राम शक्कर होला। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील दो तरह के फाइबर होला। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होला। इसे खाए में कई तरह से प्रयोग कई जाला। मोदी में मिक्स करके पी या पाकल होकर सब्जी में डाल के बनाई। आटा में मिला के एक रोटी भी बना सकता नहीं। शहर के अच्छा अच्छा स्टोर्स में सोया मिल्क आसानी से मिल जाला। ई फ्लेवर वाला और ई बिना फ्लेवर वाला के भी मिलेला। ग्लास सोया मिल्क में प्रोटीन के मात्रा लगभग उतना ही होला जितना कि एक ग्लास गाय के दूध में होला। दो सौ मिलीलीटर सोया मिल्क में 80 कैलोरी और लगभग 6.6 ग्राम प्रोटीन होला। खाना कुक करते समय कुछ बात के ख्याल रखी। मीट के धीमा धीमा और कम आंच पर पकाई। कोशिश करी कि स्टीम करके पकाए जाए वाला चीज के फ्राई ना करी। डाइट संबंधी ऐसा टिप्स रवा के जौ रखे में मददगार हुई। ब्रेकफास्ट में साबुत अनाज के जरूर शामिल करी। इमें पॉलीफिनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होला। पॉपकॉर्न के ई मामला में काफी स्मार्ट मानल जाला। इमें दूसरा प्रोस्टेड स्नैक्स जैसे चिप्स के तुलना में 5 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट पावल जाला। महिला लो अक्सर घर के कामकाज में अपन सुबह के नाश्ता भूल जाला लो, लेकिन ऐसा कैल ठीक नहीं के। जे लोग सुबह के नाश्ता ना करे के रूटीन बना ले बा, वो लोग में टाइप 2 डायबिटीज के आशंका अधिक हो जाला। तो ऐसे अपना दिनचर्या में सुबह के नाश्ता जरूर शामिल करें। तो दोस्त लोग अब घड़ी के शुई कर रहल बा इशारा कि हम ली रउआ से जाए के आज्ञा। वादा के साथ कि फिर होई हमार भेंट काल कुछ दूसर नुस्खा के साथ। तब तक रखी रहुआ अपन सेहत के ख्याल। आज सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विकास योजनाओं की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा, रहस्यमय ढंग से एक जिला परिषद के सदस्य लापता, दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, सरकारी विद्यालय में छात्रों का बेरहमी से पिटाई करता हुआ वीडियो वायरल, अभियोजन तथा न्यायालय के कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन, महादलित सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन, कब्रिस्तान, घेराबंदी तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें तथा जिन परियोजनाओं में भूमि विवाद, अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण कार्य प्रभावित है, उसका त्वरित समाधान कर कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों, सांसद एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के स्वीकृति एवं प्रगति पर चल रही परियोजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्र भवनों, महादलित सामुदायिक भवनों और कब्रिस्तान, घेराबंदी इत्यादि पर भी बिंदुवार तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला परिषद सदस्य एक रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं, जिसको लेकर परिजनों में भय व्याप्त हो गया है। परिजन अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 के सदस्य रतिकांत शर्मा 23 जुलाई के शाम को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों के अनुसार वे बाइक से घर से निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने बरौली थाने में आवेदन देकर अनहोनी की आशंका जताई है। अब बरौली थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में NH 90 पर बीती रात एक भीषण हादसा हो गया। दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में खौफनाक हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस भीषण हादसे में खाली ट्रक के परखचे उड़ गए और वह मकान में घुस गई। दूसरी गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज हो गई। बताया जा रहा है कि बालू लदा हुआ एक भारी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह के मकान में जा घुसा। आधी रात को मकान में ट्रक घुसने से इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे में 37 वर्षीय अमरेश कुमार तिवारी की जान चली गई। मृतक पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिले के साढ़ी थाना क्षेत्र के नोनी पापड़ गाँव के स्वर्गीय होशिला तिवारी के पुत्र बताए जा रहे हैं। हादसे की दुखद खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों के मदद से किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया और आगे अब मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सामे प्रखंड के प्यारेपुर विद्यालय में एक रिटायर्ड शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में घुसकर बच्चों की डंडे से बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद छात्रों में भारी दहशत है, तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले पर फिलहाल कोई बयान देने से बच रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति विद्यालय में घुसकर कक्षा में जाकर बच्चों को डंडे से बेरहमी से पीटते हुए दिख रहा है। बच्चे भी उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाते हुए और खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चों की यह पिटाई क्यों हो रही है, इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार जो आरोपी शिक्षक हैं उनका चंदेश्वर दुबे नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पदाधिकारी इस मामले में आवश्यक जाँच पड़ताल करने में लगे हुए है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व और न्यायालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित तमाम पदाधिकारीगण, DCLR इत्यादि मौजूद रहे। इसमें कार्यों के साथ साथ भूमि सुधार, उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता के न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को भी राजस्व मामलों के समयबद्ध निष्पादन, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू विवाद, अतिक्रमण निष्पादन तथा अन्य लंबित प्रकरणों में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की भी समीक्षा की। इसमें आपराधिक मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने का उन्होंने निर्देश दिया। बैठक के दौरान हेरियस क्राइम, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट से संबंधित वादों की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, समय पर आरोप पत्र, साक्ष्य एवं गवाहों की उपलब्धता तथा न्यायालय में मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष बल दिया। आज पुलिस लाइन डे के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस लाइन में पहुंचकर पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का भी संचालन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्या और उनके मांगों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। मोचका गांव थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के एक मामले में प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया प्राथमिकी आरोपी इमरान अहमद है, जो झीरवा गांव के शमशाद अहमद का पुत्र है। मोचका गांव पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोरे थाना क्षेत्र में भी दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भीषण टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया और 2 लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बरौली के रतन सराय पुल के पास भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार स्वर्ण व्यवसायी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यवसायी सिवान से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मृतक बरौली नगर वार्ड संख्या 12 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों के आंदोलन के बाद उपद्रव, तोड़फोड़, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर कथित हमले के मामलों में दर्ज मुकदमों को बिहार सरकार ने वापस लेने के लिए निर्देश जारी किया है। इसको लेकर अब बुद्धिजीवी वर्ग ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार के इस निर्णय को जहां सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक संवेदनशीलता और आंदोलनकारियों के हित में बताया, तो वहीं दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले लोग इसे कानून व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत मान रहे हैं। दरअसल छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। कई स्थानों पर प्रदर्शन उग्र होने, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तथा पुलिस प्रशासन के साथ टकराव की खबरें आईं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी बीच विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से सरकार पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा और सरकार ने बिना शर्त मुकदमे वापस लेने के फैसले जारी किए हैं। इसको लेकर बहस तेज हो गई है। क्या यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है या इसे कानून के शासन पर सवाल भी खड़े होंगे? लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार से असहमति जताना, अपनी आवाज उठाना और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करना भी लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। और सवाल यही है कि क्या मुकदमे वापस लेकर सरकार ने लोकतांत्रिक संवेदनशीलता दिखाई है या इस फैसले से कानून तोड़ने वालों का मनोबल बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले समय में सरकार की कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी एडीपी योजना एवं राष्ट्रीय बायोश्री योजना का सफल आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र में किया है। इससे हजारों लाभार्थियों को सहायक उपकरण और आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुई है। इस जन कल्याणकारी पहल के लिए सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भारत सरकार के मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सांसद ने अपने अनुरोध में कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही उनके जन प्रतिनिधि होने का मूल उद्देश्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इस अनुरोध का सकारात्मक विचार करेगी और शीघ्र ही पुनः शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनता का कहना है कि सांसद सदैव अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हैं और प्रत्येक वर्ग गरीब किसान युवा महिला दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विकास योजनाओं की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। रहस्यमय ढंग से एक जिला परिषद के सदस्य लापता। दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। सरकारी विद्यालय में छात्रों का बेरहमी से पिटाई करता हुआ वीडियो वायरल। अभियोजन तथा न्यायालय के कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97-714-86164।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और

0: सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: जान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।

0: नमस्कार
1: नमस्कार। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
0: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
6: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
8: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
6: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
9: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
6: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
10: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ते ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।

0: जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारतीय एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
0: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: बन रहा हो तो सिर्फ ईट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में

0: 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
1: सिवान ब्रांच में 9942071405 मेरवा ब्रांच में 8207856403
2: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना
3: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना
2: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं
5: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर
6: अरे मुन्नी तुम आ गई चल मेरा कान का झुमका ला
7: ओ माई गॉड आज फिर से भूल गई
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है
7: सॉरी यार कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी
7: आर्टिफिशियल फ्लावर आर्टिफिशियल गहने सौंदर्य प्रसाधन गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज
7: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का हुआ गठन। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान कल। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए तीन जिलों पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। इन अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। पटना के लिए गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भरतिया और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यायालय प्रशासन के अनुसार ये अदालतें लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी। इन अदालतों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर मुकदमों का ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का लक्ष्य है। अदालतों को अधिसूचित करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के फैसले के बाद महाधिवक्ता एसटी संजय ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों और अभियोजन पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुल 64 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों से कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। एओयू के अनुसार जहानाबाद निवासी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को हजारीबाग ले जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की साजिश में भूमिका निभाई थी। इस मामले में अब तक कुल 296 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। डॉक्टर सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि यह नया विधेयक केवल दिखावा है, क्योंकि इसमें केवल पूर्व के कानून में संशोधन किया जा रहा है। वहीं राजद के अभय कुमार सिन्हा ने चर्चा में भाग लेते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक मामलों की समयबद्ध जांच कराने और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग उठाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। संवाददाता सम्मेलन में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां, फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें और सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।
1: केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो मिले TAPF, वो 14 कंपनियां मिली हैं। इन सभी को बूथ में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहां पे एक बिल्डिंग में ज्यादा बूथ है उसमें जो जिला बल है वो भी लगाया जा रहा है। उसमें क्यू लगाने के लिए, मतलब कतार लगाने के लिए होमगार्ड्स की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोन बांटे गए हैं कि जहां पे भी कुछ घटना हो तो वो लोग पहले रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा भी विभिन्न चौक चौराहों पर और विभिन्न बिल्डिंग से क्लस्टर पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
0: मतदाता टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने क्रूज भारत मिशन के तहत देश भर में 38 नदी क्रूज सर्किटों की पहचान की है। इनमें बिहार से जुड़े दो प्रमुख सर्किट शामिल हैं। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता वाराणसी सर्किट और दीघा ब्रिज पटना सर्किट बिहार से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। श्री चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद की बेहतर व्यवस्था की जा रही है।
2: सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब शनिवार का दिन स्कूल आधा ही चलेगा। अब पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, आधा ही चलेगा। हाफ डे चलाने का काम शुरुआत किया जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए रिक्तियों की पहचान कर बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के कार्य को मॉनसून समाप्त होते ही तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, नियमित समीक्षा करने और परियोजना में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पटना में बिहार गति के तहत 100 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली जल संसाधन, पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, मंडई वियर परियोजना, वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर, आमस दरभंगा 4 लेन और कन्हौली शेरपुर 6 लेन परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद मिलों के पुनः संचालन के लिए गन्ना उद्योग विभाग को 12 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच के बाद इन्हें निवेश प्रोत्साहन परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जिन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें नवादा का वारिसलीगंज, सारण, सिवान, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया शामिल हैं। प्रस्ताव देने वाले निवेशक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के उद्यमी हैं। राज्य में पहले से चीनी मिल संचालित करने वाले कुछ कंपनियों ने भी नई मिलें स्थापित करने की इच्छा जताई है। आर्थिक अपराध इकाई ने जमुई जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी, उनके पति गुड्डू यादव और उनके सहयोगियों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 34 लाख रुपए नकद, भूमि और वाहनों की खरीद के कागजात तथा निवेश संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार गुड्डू यादव पर संगठित आपराधिक गिरोह चलाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, अपहरण, लूट और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मामलों में जमुई, लखीसराय और नवादा के कई थानों में 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना उच्च न्यायालय परिसर में पिस्टल की 25 गोलियां मिली हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलियां लॉयर्स एसोसिएशन हॉल में एक अलमारी के ऊपर रखी मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में संचालित ऑपरेशन नया सवेरा 3.2 के तहत 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच कुल 25 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 60 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंगिक अपराध और ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप से संबंधित 9 कांडों में 25 नाबालिगों को छुड़ाया गया। साथ ही एक महिला सहित 5 मानव तस्करों की इन मामलों में गिरफ्तारी हुई है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध बोधगया से सारनाथ की यात्रा पर गए थे और पूर्णिमा के दिन अपना उपदेश दिया था। इधर इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पटना साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को झारखंड के कोडरमा से गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी उज्ज्वल कुमार को स्नाइपर गन के साथ गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कुख्यात अपराधी फेकन कुमार सदर अस्पताल से फरार हो गया। ड्यूटी के दौरान लापरवाही के मामले में 1 हवलदार और 2 सैप जवानों को निलंबित कर दिया गया है। नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 280 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के महीन गांव के टीलर चौक के पास अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही सदर थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट पेपर लीक मामले और छात्र प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पेपर लीक रोधी बिल पर लोकसभा में तकरार, आरोप प्रत्यारोप की बौछार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बेदाग छात्र रिहा हों, राज्यों पर FIR पर जांच की छूट। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के मामले में जेल में बंद युवाओं की रिहाई का रास्ता साफ, सरकार ने वापस लिए सभी 64 मामले, आज से रिहा होंगे छात्र। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। राष्ट्रीय सागर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, TRE3 शिक्षक भी तबादले के लिए कर सकेंगे आवेदन। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार सचिवालय में जींस टी शर्ट पर रोक। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का हुआ गठन। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान कल, स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
9: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Now pick your phone up. Hello. You're going to be much dearer. हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
12: हेलो नमस्कार मैम।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: जी मैम, कैसे हैं?
13: मैं तो अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
12: अभी जकास मैम, आज लेट से वो तो स्टार्ट हुआ। जी मैम, कितने बजे स्टार्ट हुआ है?
13: यही बस 6-10 मिनट पहले।
12: जी मैम, सफरज अली बोल रहे हैं गोपालगंज से। हमेशा नहीं जुड़ पाते, जब टाइम मिलता है तब जुड़ते हैं ना, इसलिए सब कुछ देखना होता है ना मैम इसी में।
13: ये तो बात सही है, सब कुछ देखना है।
12: जी मैम, आपका नाश्ता हो गया?
13: हाँ हमारा तो हो गया। और आपका?
12: जी हम लोग का भी हो गया है। आज हमारा दोस्त फरमाइश करेगा गाना का।
13: अच्छा
12: जी मैम, बात कराएं?
13: बिल्कुल कराएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: जी वो कौन सा सॉन्ग था?
13: नाम बता दीजिए अपना।
12: मेरा नाम दानिश है। अच्छा। और आपका?
13: मेरा भारती।
12: अच्छा है, कोई निकनेम आपका?
13: नहीं बस भारती,
12: बस ऐसे आगे पीछे कुछ नहीं।
13: भारती कुमारी हूँ।
12: वो तो आप सॉन्ग सुना दो मेरे को, वो कौन सा? पल पल दिल के पास, वो ओल्ड वाला सुनाना, नए वाले नहीं सुन के सुकून मिल रहा है और आप भी सुन लें। मैम हम रेडियो का बहुत पुराने वाले फैन है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, लेकिन हम बोलते हैं बहुत कुछ है।
13: वो तो है, रेडियो में सबको जुड़ते हैं एक साथ, अच्छा लगता है,
12: इसका नशा ही अलग है। चलिए एडवांस में आपको धन्यवाद बोलते हैं। आज तो नहीं बजेगा,
13: कल
12: बजेगा मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद।
13: रेडियो रंजन कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: और आपका भी।

0: जी नमस्ते
1: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: दाल भी सुंदर तो।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपन बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: धूप बहुत तेज है इधर।
1: इधर तो अभी उतना नहीं है। ठीक है,
0: परदेश परदेशी रहना है मुझे छोड़ के।
1: कौन किसी को डेडिकेट है? ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: जी नमस्ते।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up, hello.
12: Now
11: pick your phone up,
12: hello.
3: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, नमस्ते मैम।
13: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
12: मैम हमको गाना सुनना है।
13: गाने के बोल बता दीजिए।
12: मैम भरत तिवारी पे दूसरा सॉन्ग बजाइएगा, जो बजाती है ना वाला नहीं, दूसरा बजाइएगा।
13: ओके, गाने के बोल बता ही देती तो अच्छा होता।
12: नहीं मालूम है।
13: अच्छा, चलिए देखते हैं, उनका दूसरा सॉन्ग होता है तो मैं बजा दूंगी।
12: ओके,
13: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
12: मैम आपको, रेडियो रिमझिम परिवार को, मेरे घर वालों को।
13: ओके, वैसे आपका नाम?
12: रुखसार अंसारी।
13: ओके, तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM
0: जी। मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है रैन जी। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, और आपके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है?
1: नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है।
0: हमारे यहाँ तो रात भर से गिर रहा है और अभी पानी गिर रहा है
1: अच्छा,
0: जी।
1: बढ़िया
0: आज आइए, खाना खा रहे हैं, दाल बाटी बनी है आज हमारे यहाँ पर जी।
1: है। आइए फिर, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: जी पिक्चर का नाम है हीरो नंबर वन, इसका कोई सा भी सुना दीजिए।
1: हीरो नंबर वन?
0: गोविंदा वाली
1: हाँ
0: जी।
1: ओके। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी मैडम जी, आपको है गोपाल ओझा जी, है दीपेन धाकड़े रघुवासा से, गजरा सिंह लोधी है रेला जी से। थैंक
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: यू मैडम जी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
12: इसके लिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब नहीं है, कैसे हैं?
13: अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सब नहीं, अपना घर परिवार में और रेडियो रंजीत पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
13: रेडियो रंजीत में सब कोई ठीक है और मेरे घर परिवार में भी सब ठीक है।
12: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए, स्वास्थ्य भी कामना है। और मौसम कैसा है उधर?
13: मौसम तो अभी ठीक है
12: जी, इधर तो हमारे यहाँ बहुत अधिक धूप अभी निकला हुआ है जी।
13: हेलो,
12: हेलो,
13: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
12: और नाम नहीं पूछे हैं मेरा, आज नाम आप ही बताइए, मैं कौन बोल रहा हूँ? भारती जी, रामविलास प्रसाद कुहा क्रीतपुर बगा पूर्वी चंपारण से। आज गाना सुनना है, फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है, और गाने का बोला है तू दीवानी है उतर आ गया।
13: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
12: जी, सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ, और दोस्त में हुए संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू विकास, अभय कुमार, दीप कुमार, अजय कुमार, राजू कुमार, उत्तर कुमार, आदर कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंदर प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजी मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जफनी जी, और रेडियो रिंगिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
13: ओके, तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
12: धन्यवाद,
13: वेलकम।

0: हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: गाना सुन लो।
0: नाम बता दीजिएगा।
1: ज्योतिष कुमार भागर, जिला भागलपुर, ग्राम रसवाल।
0: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: साजन का घर।
0: इस मूवी का कौन सा सॉन्ग?
1: सावन आया बादल है।
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जिनके के लिए रहेगा।
0: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
16: नमस्ते मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला बनारस।
17: जी कैसे हैं आप?
16: बढ़िया है मैडम जी। उस दिन फोन लगाया था बुधवार के दिन, वो गाना तो आया ही नहीं मेरा।
17: नहीं आया तो आज आएगा।
16: तक आएगा वो, बुधवार लगाया था मैंने।
17: आज आएगा क्योंकि अभी उसमें का बुधवार का कुछ कॉल बचा हुआ, आधा बच गया है और उसके बाद ये वाला जो कॉल है ये कल या
16: जी। गाना सुनना है वो दामनी फिल्म का।
17: बता दीजिए कौन सा?
16: दामनी फिल्म का है वो, बिन साजन झूला यूनू मैं बाधा कैसे बोलूं, साधना सरगम कुमार सानू की आवाज में ये गाना।
17: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट है?
16: डेडिकेट है जीतन दाखड़ है, सुनील साहू है, ज्योति साहू जी है और आपके लिए भी है डेडिकेट गाना।
17: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार। हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी। आज गाना सुना दीजिए मैम, तारालाल यादव का बोलबम गीत।
0: कौन सा?
1: ड्राइवर अभी नया हुआ।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है
1: जी? सबसे पहले मैं आपको और जितने भी रेडियो रंजन के प्यारे प्यारे श्रोतागण है देश विदेशों में सबको, और हमारे काफी सर मदन कुल हैं, राजकुमारी हैं, कृष्ण कुल हैं, कृष्ण प्रसाद यादव हैं, शशिधर प्रसाद यादव हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं।
0: ओके, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम
1: जी। कॉल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: वेलकम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 9.4 एफएम में।
9: नमस्ते मैम।
8: नमस्ते,
9: कैसी हैं मैम?
8: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
9: हम भी ठीक है।
8: तो नाश्ता हो गया आपका?
9: हाँ हो गया आपका?
8: मेरा भी हो गया है।
9: और सब ठीक है ना? और मौसम कैसा है?
8: मौसम अभी तो ठीक है। और बताइए क्या हो रहा है अभी?
9: अभी तो आपके पास कॉल लगा रही थी।
8: अच्छा,
9: आपके मोबाइल में पैसा नहीं था?
8: हाँ हाँ, अभी रिचार्ज हुआ है,
9: हम लगाए थे। था, नहीं लग रहा है, पैसा नहीं था आपके मोबाइल में, तो रख दिए थे, फिर से लगाए थे, बिजी बताने लगा।
8: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
9: पते लाज भांजू तेरी आँख मेरी फिर भी रोइना।
8: एक बार और बता दीजिए।
9: पते लाज भांजू तेरी आँख मेरी फिर भी रोइना।
8: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
9: जी मैम, आपको और टोनी मैम को, और मेरी दीदी है उनको, और छोटे भाई है, और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजी को।
8: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम।
9: मैम कब तक में बज जाएगा?
8: कल या परसों?
9: ठीक है, तब बाय मैम।
8: बाय बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी भारती जी।
1: हाँ
0: जी, हम रखे हैं भारती
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया। कब से फोन लगा रहता, लगे ना रात सारी बिजी। इतना तो प्रधानमंत्री का फोन बिजी नहीं रहता।
1: क्या ही कीजिएगा।
0: कस्टमर सब ज्यादा हो गया है। सब और बोलिए, सब क्या हो रहा है? खाना पीना हो गया है?
1: हाँ, खाना पीना हो गया है। और आप सभी का?
0: हम तो अभी जस्ट खाए और खा के फोन लगा रहे थे।
1: अच्छा, तो कौन?
0: आधा घंटा हो ही गया है लगाते लगाते। जब लगा रहे थे बिजी।
1: तो जस्ट अभी 11:30 से स्टार्ट हुआ है।
0: लेट हुआ ना आज।
1: कौन सा गाना सुनना है?
0: गाना तो सुनना था नीलकमल सिंह का।
1: गाने के बोल
0: लागल शहर के, इतनी शहर का है ना।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: लाला जी है, हरिंदर, पप्पू, भलेगा मेरा दो, और पूरा ऑल फैमिली रेडियो रंजन जितने सुनने वाले हैं सब।
1: अच्छा, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ये अभी तू बज रहा था
1: जी?
0: रिपीट चल रहा अभी?
1: नहीं, ये इसके पहले वाला जो दिन को कॉल रिकॉर्ड हुआ था ना, वही है, बुधवार वाला है।
0: ठीक है।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
2: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
12: Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो मैडम
14: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: आपको भी नमस्ते। मैं मन्नान बोल रहा हूँ, कपूरा से। आपका तो प्रोग्राम हम कॉल सुने हम, है ना, बहुत अच्छा लगा। तो क्या बोलते हैं, हेलो माय चॉइस ना,
14: योर वॉइस योर चॉइस।
13: हाँ योर वॉइस, वही तो बोलना नहीं आता हमको।
14: कोई नहीं,
13: आयट के बाद भी लगाए हम, एक आदमी से जब बात कर रही थी उसके बाद हम लगाए तो फिर मतलब लग नहीं रहा है। तो फिर जो रिंग होता है, मतलब बहुत कल परेशान हुआ आपसे बात करने का, बहुत परेशान बढ़ गया मोबाइल लेकर, लगाते लगाते थक गया, पर तो नहीं लगेगा। ऐसा क्यों मैडम?
14: नहीं नहीं, कॉल और वो व्हाट्सएप का मैसेज दोनों साथ में देखना होता है, तो कभी कॉल का देखते हैं लोग, कभी व्हाट्सएप वाला देखते हैं लोग।
13: तो देखा है लो, तो मतलब हमारा मन मिस हो गया, एक नहीं, दस भी नहीं, 20 भी अगर मिस हो जाए रिंग, तो फिर दुर्भाग्य की बात है ना। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठ रहा है, और लोगों का उठ जा रहा है। है ना, मेरा उठ नहीं रहा है। देखिए हमारा ट्रिपल ऑन है लास्ट में, तो आप उठाइएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो मैसेज हमको लिखने को नहीं होता है, तो इसलिए हम नहीं लिखे हैं मैसेज हम, तो इसलिए हम कॉल का जो नंबर 72 77 16 65 98 तो उसी पर हम कॉल कर रहे थे, लिंक करके परेशान हो गए, नहीं लगा हम सोचे भारती मैडम से आज थोड़ा सा इसमें भी हमको ये गाना सुन ले है ना, बहुत ख्वाहिश था हमको सुनने का लेकिन हुआ ही नहीं, अगर हम ही हार मान लिए तो। अच्छा एक बात है कि आपका प्रोग्राम बहुत हमको अच्छा लगा और साथ में आप गाना भी गा लेती हैं, ये भी हमको अच्छा लगा, थोड़ा गुनगुना लेती हैं तो भी अच्छा लगा हमको, जो अच्छा लगेगा तो अच्छा ही का तारीफ करेगा ना दूसरा होगा। अब आज ये 9 बजे वाला और 5 बजे वाला में कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम,
14: बता दीजिए आप।
13: वो गाना सुना दे साथिया नहीं जाना, सही गाना है जी ना लगे, तो सही तरफी का गाना है ये।
14: अच्छा
13: हाँ, तो साथिया नहीं जाना जी ना लगे ऐसा ही गाना है।
14: ओके
13: तो अगर ये गाना हो तो वो सुनवा दीजिएगा, नहीं तो अपने पसंद से कोई गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
14: ओके
13: तबीयत से भी सही रहता है तो हमको यही गाना सुनवा दीजिएगा मैडम है ना।
14: ओके
13: रख रहा हूँ मैडम,
14: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सतीश रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम जी?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं
0: हेलो।
1: पता नहीं समाचार कैसे?
0: समाचार तो ठीक बावे।
1: पूरा फुल रिंग हो तो दोबारा भजन का उठानी।
0: अच्छा,
1: हमारे गनवा का सब गनवा बजा दे।
0: ना ना, रोबो बाजे लगी ना, रोबो सुने नहीं
1: ना के बजा
0: बाजल बना। तो बुधवार के जो रिकॉर्ड भइल हुई तो आधा बाज गिल बा, आधा आज बाजे, ठीक बा। और एक पहले के राउंड जितना कॉल बा सब बाजल बावे।
1: दूध के सोमवार के दोनों के बाजल,
0: ना ना
1: शुक्रवार के बाजल बा,
0: सोमवार वाला भी बाज गेल हुई। कहे से कि बुधवार के हम कॉल बजावते नहीं और हमने की एगो कॉल ना छोड़े नहीं सन, सब केहू के कॉल बजा नहीं सन।
1: सुने नहीं ना, सब पूरा लोग सुन ले, शुरू से अंत तक ले। 5 बजे भोर से 10 बजे रात तक ले चालू रहे, जितना थी उतना सब सुन लेने।
0: अच्छा ठीक है, और देख लेते नहीं आज के कॉल में तो होकवे करी। कहे से और बाजल नहीं है, आज कौन सा गाना सुनेगा? हेलो।
1: हाँ, गाना सुना दे प्रेम रोक।
0: और गाने के बोल?
1: गाने के बोल है
0: गाना, किसी को सुनाना भी है
1: आपको? रेडियो
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हां, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
14: हर घर सूर्य घर।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
17: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
18: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
19: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
19: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुरी से।
3: कैसी हैं?
19: ठीक है, आप अपने बताइए।
3: बस हम भी ठीक हैं।
19: अभी मैं अभी कौन मैम बोल रहे हैं तो बताइए गलाती में।
3: हाँ,
19: आप सब सुनाइए।
3: और सब तो ठीक है, बताइए क्या हो रहा है अभी?
19: अभी कॉल लगा रहे हैं, लग गया, जल्दी लग गया।
3: अच्छा, टाइमिंग भी तो 12 बजने वाला है। टाइम भी तो ज्यादा हो गया है, 12 बजने वाला है।
19: हाँ।
3: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
19: सुना दीजिए। तोड़ोगे मेरा दिल मुझे गरबा करोगे।
3: एक बार और?
19: तोड़ोगे मेरा दिल मुझे गरबा करोगे।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
19: आपको सुनाएंगे, सोनी मैम को, नाना मैम को, जितना लोग सुनते हैं रेडियो सर को।
3: ओके, तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 91.4 असम में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, नाम बता दीजिए अपना। कौन सा गाना सुने एक बार? खेसारी लाल के। खेसारी लाल के कौन सा गाना सुने एक बार?
0: कौन सुना रहे?
1: अच्छा, और नाम क्या हो रहा?
0: हेलो,
1: ठीक बाबे, तब गाना क्यों सुनाऊं के बा?
0: सब कुछ सुन ले।
1: अच्छा चलिए, गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रूम 91.4
2: Thank you.

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन,

0: मोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचाई कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम,
12: क्या हाल है?
11: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
12: बोल, हमको गाना सुनना है।
11: बता दीजिए कौन सा।
12: हमको नमक लाल जम का गाना है।
11: और गाने के बोल
12: घुंगरू बांध मेरा नाती।
11: एक बार और बता दीजिएगा।
12: घुंगरू बांध मेरा नाती थी।
11: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
12: सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रूम सुनने वाले को कहा है उन्होंने कहा।
11: तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। Radio Engine 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम। हाँ जी मैडम बोलिए।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: कुंडा जिला से बोल रहे हैं, जीतेन दांकर ककवा था गाँव से।
0: तो कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम, काम कर रहे थे आप बस कॉल का इंतजार कर रहे थे कब लगे लगाओ।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना सुनना है वो मोहरा पिक्चर का गाना है, नाम कजरी धार ना मोदियों की हार, कितनी सुंदर हो।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ जी, गोपाल ओझा है गाँव से, सुनील साहू है, ज्योति सिंह है, और राकेश अमन अकुल रामधन, फिर इनको डेडिकेट रहेगा पूरी फैमिली को, रहेगा रंजन फैमिली को।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 80029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 97714861.
7: Excuse me boss, you have a text message.

0: हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेम 96.4 FM पे समय 9:21 हो रहा है हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें आप तो पुराने गाने का फरमाइश करें, क्योंकि ये कार्यक्रम पुराने गाने के लिए ही है। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। फिलहाल मेरे पास पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है पीले पीले ओ मेरे राजा, सुनना है आपको, सुनाना है आपको और सभी दोस्तों को। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी, तो चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, माय नेम इज़ दीपक एंजेलर जी। तो चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपसे पिछले सप्ताह कहे थे कि अब तो छोड़ दीजिए, जो दर्द मिला उसे सहने की क्षमता बढ़ाएं और अपने कार्य में लगे रहें। तो फिलहाल आपके गाने हैं तो पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय नमस्ते सर, क्या हाल है, मैं भी शामिल हो गई हूं। और इस मैसेज को करती हैं खुशी उपाध्याय पसरमा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में बहुत दिन बाद। आगे मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि हाय, तो अपना आगे का भी मैसेज सेंड करें ताकि आपकी पहचान हो और पहचान के साथ साथ गाने की भी फरमाइश होती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पीले पीले ओ मेरे राजा।
1: तुम हो हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं, जानी

रेडियो एम सी एम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, और फिर गाने के साथ इंजॉय करना है। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। अगर मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। शगीर अंसारी जी तेजपुर आश्रम से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और हेलो सर, मेरा गाना बजा दे, मैं नांदनी यादव थावे से बोल रही हूं। तो बिल्कुल बजाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर मेरा कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए बिल्कुल आपकी सॉन्ग सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्लीज़। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन आप कौन? और पीछे के मैसेजों से ज्ञात होता है सोनी सरे वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से जुड़ी हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश ब्लेस सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए सर जी। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अपने दिल का दर्द उसे बताना चाहता हूँ, उसे कितना चाहता हूँ, उसे महसूस कराना चाहता हूँ, कितना रोया हूँ उसे पाने के लिए, उसकी गोद में सर रख कर उसे बताना चाहता हूँ। सोनू भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर, मैं भी आ चुकी हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, निशा पांडे। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के नाम बताया जाता है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, दीपक एंड ज्वेलर जी की फरमाइश।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: ट्रेडर एमजीएम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और गाने की फरमाइश करने वाले दीपक एंजेलर जी, शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया अभी इनका दर्द गया नहीं, तो अब तो खत्म कर ले भाई। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू जी, मैं रेखा पांडे गोपालगंज सरिया वार्ड नंबर 5 से, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल प्ले करने की कोशिश रहेगा, फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा, गुड इवनिंग सर, हम भी जुड़ गए हैं आपसे, और मैं मंकेश साहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, और गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हमें लगता है कि आपके गाने तो हम शायद सुनाए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं सोनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि दिलीप राम भाई का पसंद काफ़ी लाजवाब था। मैसेज करते हैं तेजपुरा शाम से सगीर अंसारी जी, बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स भैया जी, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और अपना परिचय दे। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज तो आते जा रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा, हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी जुड़ चुकी हूँ आपके शो से रोशनी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा, नाजिया परवीन, एड्रेस गोपालगंज जंगलिया, सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग नेम आकाश, किसी दीवाने को हमसे मोहब्बत हो जाए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने को प्ले करते हैं, और इस गाने के फरमाइश करती हैं खुशी पसरमा से, और गाने का बोल, कितने दिनों के बाद मिले हो, कैसे बताएं तुम्हें सनम।

रेडियो रेमसीम 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और बिल्कुल यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल पूछिए, पूछना जरूरी है। मैसेज करती है रोशनी मानिकपुर से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अब मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। चलिए आपकी सॉन्ग सुनाते हैं और इस मैसेज को पहुंचाती हैं सोनी सरेवर नंबर 1 गोपालगंज से। और गाने का बोल दिया गया है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे, आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर ले। आगे मैसेज पहुँचा, हेलो सुनो भैया का हाल बा। शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हैं और कहते हैं कि आज तो मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल खुशी से रहेगा। फिलहाल स्वागत है आपका। और अगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों, मगर दिल से चाहने वाले बार बार नहीं मिलता। सोनू भाई नमस्कार, क्या हालचाल है, सब गाना मस्त है ना। और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि नाइस सॉन्ग, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। और तो हम तो कोशिश करते हैं कि सबकी फरमाइश एक एक करके पूरी करें, इसमें कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी सुना दीजिए। जल्दी तो कैसे करें, एक एक करके ही तो सुना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9939365923। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास, गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पे शो चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और समय हो रहे हैं 9:56। आगे बढ़ेंगे, आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए। मैसेज को शामिल करने से पहले हम आज

यह केवल मच्छरों के काटने से ही फैलता है। मलेरिया के प्रकार हैं, मुख्य दो प्रकार होते हैं, जो एक है प्लाज्मोडियम विवैक्स, अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं लेकिन दोबारा हो सकता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, यह रोग अधिक गंभीर और जानलेवा हो सकता है। इनके लक्षण है मच्छर के काटने के 7 से 14 दिन के बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तेज बुखार, ठंड लगना और कंपकपी, अधिक पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द और कमजोरी और थकान महसूस करना, बदली जैसी उल्टी आना और भूख कम लगना। कुछ मरीजों में पीलिया या बेहोशी भी हो सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं, इनकी जांच है रक्त की स्लाइड और रैपिड मलेरिया टेस्ट CBC तथा अन्य आवश्यक जांच भी स्वास्थ्य कर्मी करा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, वो अपने आवश्यकता अनुसार सूझबूझ के अनुसार जांच करा सकते हैं। उपचार है, मलेरिया का उपचार डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटी मलेरियल दवाएँ पूरी अवधि तक ले, पर्याप्त आराम करें, खूब पानी, ORS, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ ले। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल ले और दवा का कोर्स बीच में ना छोड़े। जितना कोर्स आपको डॉक्टर बताए पूरा करें। इनके बचाव हो सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी बाह के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी की टंकियों और कूलर की नियमित सफाई करें, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। संभावित जटिलताएं यह हो सकती हैं कि यदि समय पर इलाज ना मिले तो गंभीर मलेरिया हो सकता है, जिससे मानसिक पर प्रभाव पड़ सकता है, गंभीर एनीमिया, किडनी फेल होना, सांस लेने में कठिनाई, बेहोशी, मृत्यु तक हो सकती है। तो यदि आप सभी को ऐसी कोई लक्षण या ऐसी गतिविधियां आपके परिवार में या आपको या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को हो तो उसको बताएं और यह उसको जानकारी दे कि ऐसे परिस्थिति में आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आप जाएं सरकारी अस्पताल में, इसका इलाज उपलब्ध है, या किसी भी संस्थान में जाएं, इसका इलाज जरूर कराएं, इससे नज़रअंदाज ना करें। यदि हम ऐसे परिस्थिति में अपने आप को समझते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी सुझाव देकर स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी जानकारी हर रोज आप सभी के बीच साझा की जाएगी रेडियो रिमझिम पे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत, तो आप सब इसका उपयोग करें। फिलहाल हमारे पास मैसेज पहुंच रहे हैं तो मैसेज को शामिल करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे जो भी मैसेज हैं उस मैसेज को शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गाना का बोल है, दिल ने यह कहा है दिल से, प्लीज़ सर बजा दीजिए। तो बिल्कुल बजाने की कोशिश है और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, बिल्कुल सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग और इस मैसेज को पहुंचाया गया है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल हंसी है जवां है। गाने के उपरांत मैसेज करती हैं रोशनी और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थोड़ा तेज वॉल्यूम में, तो बिल्कुल जितना हमें लगता है उतना वॉल्यूम में साथ देते हैं। और आगे मैसेज करते हैं राजू कुमार मधुसरिया से और कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे नंदनी यादव थावे से की हैं और गाने का बोल देती हैं, धीरे धीरे पास आ रही, तो चलिए आपकी फरमाइश सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

हवी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे सुन रहे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं शगीर अंसारी जी तेजपुर शाम से। और गाने का बोल देते हैं, नसीब होगा मेरा मेहरबान कभी ना कभी। ओल्ड इज गोल्ड गाने की फरमाइश किए हुए हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और शगीर अंसारी जी आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे बढ़ देंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा। और गाने का बोल दिया गया है, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, और इस गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागण हैं निरंजन जी बतरदे से जुड़े हुए, काफ़ी प्यारा सॉन्ग। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो चुका है और कुछ आगे निकल रहे हैं, तो चलिए कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंतिम गाने प्ले करते हैं निशा पांडे की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है, अभी मैसेज पहुँचा है नाइश गाना, और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है दिल ने ये कहा है दिल से, प्लीज़ सर बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने बजाते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ, और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, हमारा समय पूरा होने के बाद से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दें, यहाँ तक कि जाते वक्त एक गाने हम छोड़ जाते हैं। तो फिलहाल कल मिलते हैं एक दूसरे से हम सभी, तो अगले गाने के साथ इंजॉय करें, और हम भी आप सभी के साथ हैं गाने तक। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार-बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो?

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ और तब तक एंजॉय कीजिए। तब तक हमारे पास वो मैसेजेस पहुँच रहे हैं।

0: तो अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक सॉन्ग गहरा हुआ, तो बताइएगा ज़रूर कि गाना आप सभी को कैसा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। बता दीजिए कौन सा सॉन्ग। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके, आपका गाना प्ले कर दिए हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: से ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के इस शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852728291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए, यहाँ बहुत सारे हमारे पास मैसेज पहुंचे हुए हैं, तो चलिए एक एक करके सभी के मैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद आजिम, अस्सलाम वालेकुम। लोहर पट्टी से जुड़ल बानी गाना सुना दी हमरो के पहले बार जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपको भी गाना सुनाया जाएगा, गाने की फरमाइश कर दीजिए, बिल्कुल सुनाया जाएगा। और थोड़ा यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, थोड़ा मैसेज पढ़ दीजिए। नमस्ते नमस्कार भारती जी, हम भी जुड़ गए हैं, राजकुमार राम MP बालाघाट श्लोक राइस मिल से। सुभाष भैया जी हमारे साथ में हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम राधे राधे नमस्कार, सुनील कुशवाहा MP सुपर सॉन्ग नैनो से। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, मैं संदीप कुमार माधवपुर सिवान से, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा चांद जिसन चेहरा तोर दिल हमार ले गई। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है, गाने की लिंक भेज दिया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे सभी के साथ। और गाना है दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। चलिए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

और यहाँ रोहित जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपका गाना प्ले करने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, गाना काटिएगा मत, पूरा बजने दीजिएगा। तो

हमने सुना रोहित जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं। मैं रोजीद अंसारी दुबई से, मुझे गाना सुना दीजिएगा ओ साहिबा ओ साहिबा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और गाना सुनाया जाएगा बिल्कुल। और इंतज़ार कीजिए अपने बारी का। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय सोनी दी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं, नाम अपना ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं और कहां से हैं। और यहां एक और मैसेज पहुंचा है जो क्लिक रहे हैं, भारती मैम और सोनी मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी बताइए, हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो इसकी मुझे इजाज़त नहीं है। और ऐसे ही आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही हालचाल पूछ लिया कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम मुकेश यादव, और वाह सुपर सॉन्ग, हमें भी सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग नेम रफ्ता रफ्ता, सनम सिंगर नेम आतिफ असलम, और डेडिकेट टू ऑल रेडियो रिमझिम एंड स्पेशल आपको थैंक्स मुकेश यादव ब्लेस्ड से। अभी पैसे की तलाश में अहमदाबाद हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर नारायण से जुड़ चुके हैं हमारे साथ गणेश कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सोनी मैम हम दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अनीस है, मुझे गाना सुनना है सोनी मैम। तो जी बिल्कुल आपको गाना सुनाया जाएगा। और

इनको गाना सुनना है रंगदारी बिहार के, तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ इनके गाने को।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल।

0: है। आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेजेस की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था मैडम जी, मुझे भी शामिल कर दीजिएगा। शेखपुर भागलपुर से

0: नुसरत खातून और उमर खातून के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो लिख रहा है, मैं भी जुड़ गया हूँ मैम, साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ। और आप कैसी हो? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुचायकोट गोपालगंज से। प्लीज़ बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए मैम, आज मेरा फरमाइश नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका हाजिरी लगा दिए हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो लिख रहे हैं, हाय हेलो भारती जी, राम राम, मैं सुनील कुमार गोपालगंज बिहार, हम भी आप लोगों से जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगला मैसेज है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, एक हावर हो गया है मैसेज किए हुए। तो जी बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गोपालगंज, और गुड आफ्टरनून भारती मैम, संतोष कुमार तिवारी जौनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते नमस्कार सोनी मैम एंड भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर, तो मोहल्ली पंजाब से आज मेरा भी फरमाइश है, लिंक भेज दिए हैं, डेडिकेट है ऑल फ्रेंड्स। और यहाँ उनकी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा चुटकुला पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जापान ने 5G सिम लॉन्च किया, चीन ने शीशे का पुल बना दिया, और भारत के लोग अभी भी पेड़ पर दिल बनाकर उसमें तीर घुसेड़ कर कल्लू लव रानी लिखने में लगे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा चुटकुला है। और इसी के साथ लिख रहे हैं, मेरा मैसेज देखे से तो पागल बाका भारती मैम, हमहू लाइन में बानी। और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, तो ऐसा नहीं है, आपका भी मैसेज यहीं पे है और मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिंक के माध्यम से, और लिख रहे हैं गाना सुनना है गरीब और रक्षाबंधन। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ।
1: मुंशी जी पर
2: हाँ ठीक हो ओकरा पकड़ के लाही, ओकर जिंद
3: कुछ गलती ना है मालिक,
2: अपन बहिन खातिर गिफ्ट सुझाओ, चल भाग जैसे

तो अभी हम लोगों ने सुना दिलीप जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रक्षाबंधन पे, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुदा को खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, और खुदा खुद दोस्त बनकर चला आया। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा शायरी है। और शायरी का मैसेज करने वाले हैं राघव जी, ओम साई टेलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैम, हम भी आ गए हैं, इंतज़ार में थे प्रोग्राम का। मेरा गाना बजा दीजिएगा, बढ़िया गाना था, मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए। तो मैसेज तो आपका मैंने पढ़ा, और नाम कपिल विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से, मेरे को गाना सुनना है, फरमाइश क्या हूँ और लिंक भेज दिया हूँ या गाना प्ले कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा तो अच्छा होगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं, ओ यारा कैसी है तेरी बेवफाई। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।

से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और चलिए बिना देरी किए, हमारे पास यह मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार जी, कैसी हैं, सब ठीक है ना? तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं और जुड़े हैं मुन्ना मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, ना रूठा किसी से कीजिए, ना वादा झूठा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए और कभी खुद से भी मिला कीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुन्ना मुंबई से, और बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैम और सोनी मैम, आपका लिख रहे हैं, सोनी मैम बीमार हैं क्या? तो नहीं, सोनी मैम बीमार नहीं है, किसी को छुट्टी मिलना चाहिए कभी कभी, और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो अभी उनकी बारी चल रही है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, नमस्कार मैम, मैं जयराम राय, बुखरौर नया टोला गोपालगंज से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहा है, मैं भी हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा देना भारती जी, भारती जी रंगदारी सॉन्ग मत बजाइए, बवाल हो जाएगा। और मैसेज करने वाले धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और लाइन पहुँची है इनकी तरफ से जो लिख रहे हैं, कुछ खोया बिना हमने पाया है, कुछ मांगे बिना हमें मिला है, नाज है हमें अपनी तकदीर पर जिसमें आप जैसे दोस्त से मिलाया है। इतनी खूबसूरत लाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गणेश कुमार नारायण पिपरा, गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो चलिए इनके गाने की फरमाइश है, सखी रे सखीरे भर पा गई नहीं। तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गणेश जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो,
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी, आप सुनाई?
0: और मैं भी ठीक हूँ। और गाना कौन सा सुनना है आपको? मैं तो आपको इसमें मतलब भक्ति सॉन्ग नहीं सुना सकती, क्योंकि ये इसमें केवल फिल्मी सॉन्ग बजता है, और इसके लिए आपको
1: सावन के महीने चले वाला बता।
0: हाँ हाँ, तो उसके लिए एक और चलता है हेलो माई चॉइस, आप उसमें अपना फरमाइश सुन सकते हैं। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सबसे पहले रहुआ कह रहे थे प्रेम जी परिवार इस बार सब फिर गया, और अपना घर के सारा फैमिली गया।
0: ओके, चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए पढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले मुस्तफ़ा सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम, हम भी शो से जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण एरिया बाबा के नगरी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और संजय यादव दुबई से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं नमस्ते मैम, क्या हाल है मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल भी ठीक ही है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं दिल से नमस्ते मैम, मैम मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और संतोष राम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं राधे राधे भारती मैम, मैं संजेश कुमार कर्नाटक से, ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा है मैम, और एग्ज़ाम देने गया था, एडिट कार्ड एडमिट कार्ड की जगह राशन कार्ड ले गया, टेकर ने पेपर की जगह एक बोरी चावल देकर घर भेज दिया। बहुत ही खूबसूरत से लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं हम लोग आपका शो अच्छे से सुन रहे हैं, मेरा दोस्त है सोनू, सिराज, रंजन, अभिषेक, जयप्रकाश, निरूल, मेरा मैसेज बड़ा है इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सभी का स्वागत है। हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो लिख रहे हैं भारती मैम, मैं मुशरत खातून और उम्मत खातून हैं शेखपुर भागलपुर से। मेरा भी फरमाइश है, रब ने भी मुझ पर सितम क्या किया है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, मैं मनोज शर्मा कररिया से जुड़ गया हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और अपना सुनाइए कैसी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, हाजिरी लगा दिए हैं और मैं ठीक हूँ। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकेश यादव, और लिख रहे हैं मोजा हमेशा धोकर पहनिए क्योंकि ऐसा ना हो कामयाबी आए और आपके पैर की बदबू सूंघ के मर जाए। तो बहुत ही खूबसूरत से लाइन है और हंसी भी आ रही है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, गाना तो बजा दिए हैं और गाना पूरा बजाने की कोशिश करें और गाने के सॉन्ग गुनगुना भी लीजिए। तो गाना भी गुनगुना रही हूँ कभी कभी। और यहाँ मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना बजाने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए अगली फरमाइश को प्ले करेंगे। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं निकेश चौहान पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं, और गाना सुना दीजिएगा और लिंक के माध्यम से हमारे पास इनकी फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए गाने के बोल हैं सजनवा बैरी भइल हमार। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सजनवा भिलेन बैरी हमार, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिएगा और नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज़ मैम तो सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक, और यही सॉन्ग है और प्लीज़ सुना दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग मैन, तो और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुकेश यादव जी कि आप हंसी तो माइक क्यों बंद कर दिया, और हंसी आए उसके लिए तो सेंड किए थे, क्योंकि काम करते करते हंसते रहना चाहिए, तो ये तो बात सही है। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। और अमित कुमार सिवान से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, सगरो धुआं धुआं भलबा जिंदगी में पवन सिंह के सॉन्ग सुना दीजिएगा, और चंदन और विश्वजीत को सुनाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और एक और मैसेज पहुंचा है जो लिख रहे हैं हेलो मैम, सोनी और मुझे सॉन्ग सुनना सकती हैं क्या, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, और मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है क्या सिस्टर, मेरा सॉन्ग सुना सकते हैं क्या। हेलो सिस्टर, मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या, अगर मैसेज गया है तो प्लीज़ एक मैसेज करके बता दीजिए। तो जी आपका मैसेज पहुंच चुका है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं सोनी मैम आपका कहाँ चली जाती हैं, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। राजू सोनी हरपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और सोनी मैम को यहाँ सभी मिस कर रहे हैं और हम भी मिस कर रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, चलिए मैसेज पढ़ेंगे कुछ देर बाद, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल।
8: हेलो
7: जी, हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्ते मैम
7: जी, नमस्ते,
8: हम थारो से रामा जी प्रसाद।
7: हाँ जी, कैसे हैं आप?
8: हम ठीक हैं, आज तो बहुत बढ़िया दिन भर बा, हवा भी बहुत बा, ठंडा दिन भर बा।
7: अच्छा जी, तो अच्छा बात बावे।
8: तो गाना सुना दे
7: बता दी
8: ठंडा भजबा तो यह बजा दे सावन का महीना पवन कर झूमे बनवा नाचे मोर
7: जी
8: सुने वाला बारे राम नरेश सुखी वाला हरिंदर किराना वाला पप्पू समोसा वाला हाँ मनुआ जितना लोग सुनता सब कोई
7: चलिए राहुल गाना प्ले कर दे लेवानी
8: नमस्ते
7: जी नमस्ते रेडियो रंजन में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद
9: सावन का महीना पवन करे शोर
10: पवन करे शोर
9: पवन करे शोर
10: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर
9: पवन

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, सावन का महीना, पवन करे शोर, और सॉन्ग था रामा जी की तरफ से और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी, गुड आफ्टरनून मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हम भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, लिंक भेज रहा हूँ, बजा दीजिएगा। और लिख रहे हैं घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, सारी गली उनके पीछे निकली, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब में निकली। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हाय हेलो भारती जी, राम राम, सुनील कुमार हैं और लिख रहे हैं कि तुझसे तो अच्छे जख्म हैं मेरे, उतनी ही तकलीफ देते हैं जितनी बर्दाश्त कर सकूं। ओह क्या हो गया है। और लिख रहे हैं यहाँ नारायण टेलर, शिवपुर से भोजपुरी गाना सुना दीजिएगा। और मैडम गाने के बोल हैं हैंडसम हीरो खेसारी लाल यादव के, और गाना है अपने पापा के दामाद करेजा तोहके बनाए भोल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए, जब साथ देने के देवे के ना रहे तो प्यार काहे के कई लू, गाना बजा दीजिएगा और कब तक बजेगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 22 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, हर हर महादेव, आप कैसी हैं मैम, हमें गाना सुनना है गली में आज चांद निकला और

हम खुरेसी में हैं, मुन्ना ठाकुर। हमको जल्दी टाइम नहीं मिलता है रेडियो से जुड़ने के लिए, और यहाँ टाइम बहुत अलग है। यहाँ पर अभी 9:56 हो रहा है और वहाँ तो टाइम ज़्यादा होगा, इसके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो बात तो सही है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सन्यासी रंजन जी के द्वारा पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि शाम होते ही मच्छर घर में कैसे आ जाते हैं। इनका कौन सा ऑफिस है जो 6 बजे छूट जाते हैं। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण से अरे राज बाबा के नगरी से, और गाना सुनना है तेरी यादों की चादर ओढ़े रात गुजर जाती है, और डेडिकेट है मंटू यादव और गुड्डू गुप्ता और लाला जी को। तो चलिए बिना देरी किए आपकी गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और सुनील कुमार जी की तरफ थैंक यू से थैंक यू का मैसेज आ गया है गाना बजाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैं रियांश कुमार यादव बिहार मुजफ्फरपुर मोतिहारी से सॉन्ग नाम अपना बारे में पीवा कुछ ना बतावे, और शिगार अंकुश राजा सिंगर हैं अंकुश राजा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी मेरा सॉन्ग कब तक चल जाएगा, नाइस सॉन्ग बहुत खूब। और अभी नेक्स्ट सॉन्ग आप ही का प्ले करना है। और लिख रहे हैं, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून जय माता दी, मैडम जी मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिएगा जो कि है दिल का भोला तबीयत का बड़ा है ज़्यादा, और डेडिकेट है सबसे पहले आपको और ऑल लिसनर को, जय माता दी मैडम जी। तो गाना आपका प्ले करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ एक और फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो पहले लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हाँ जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: क्या
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: गाना सुना है मैम
0: जी, बता दीजिए कौन सा।
1: तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं,
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी को, रेडियो सुनने वालों।
0: ओके चलिए मैं आपका गाना प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम पे।
1: थैंक यू कॉल लेने के लिए, धन्यवाद।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिपजन 90.4 एफएम। तो चलिए बिना देरी किए मैसेज यहाँ हमारे पास पहुँचा हुआ है, उसे शामिल करेंगे। और मैसेज है, भारती जी नमस्कार, हम जुड़ गए हैं दिलीप राम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा भी गाना बजा दीजिए भारती जी। तो आपका भी गाना प्ले होगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक है, मैम मंटू यादव पूर्वी चंपारण अरेराज से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से, सॉन्ग लगी आज सावन की रिमझिम झड़ी है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा मैडम जी मेरा सॉन्ग कब तक प्ले हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और मैसेज करने वाले हैं शिव सागर दीवाना, और गाने के बोल हैं, दिल का भोला तबीयत का बड़ा है ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, मैं मनोज शर्मा कररिया से जुड़ गया हूँ। एक बार पहले भी मैसेज किया था, उसमें आपने शामिल नहीं किया, और इसको कम से कम शामिल कर लीजिएगा। और आप कैसी हैं बताइएगा, सोनी मैम छुट्टी पर गई हैं या हमेशा के लिए रिमझिम छोड़ के चली गई हैं, यह बताने का कृपया कीजिए। तो नहीं, सोनी मैम छुट्टी पर गई हैं और हमेशा के लिए नहीं गई हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैंने एक बार पहले भी आपका मैसेज शामिल किया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, दुर्गेश आजमगढ़ से, सोनी मैम जी नहीं आई हैं क्या? मैम जी नहीं, आज सोनी मैम नहीं आई हैं, थोड़ा उन्हें भी छुट्टी मिलना चाहिए और उन्हें भी आराम करने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी आज भोजपुरी सॉन्ग सुनने का मूड है और पवन सिंह का दरार मूवी का कोई भी सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना नाम प्लीज ज़रूर बताइएगा। और

0: और हमारे पास अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: मैं तो ठीक है, मैं
0: हाँ हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है।
1: गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग? केहू से केहू ना कल बेवफाई।
1: कौन सुन के? हाँ,
0: और गाना क्यों के डेडिकेट भी बा?
1: आप सुन लीजिएगा, जितना लगे सब कुछ सुन रहे हैं, सब देखने का।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए आपका गाना प्ले कर

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद के प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
9: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
8: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
10: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
8: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
11: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
8: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
12: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहें,
13: हां।
12: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
8: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
13: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
8: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
14: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
8: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
15: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
16: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
8: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
17: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
8: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
19: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
20: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
19: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
20: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
19: संपर्क करें 9939365923।
21: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
22: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852728291, जी हाँ 9852788291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696, जी हाँ 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की ओर, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ उत्तम सोनी जी जुड़ चुके हैं हरपुर से, और लिख रहे हैं, जी सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर, मैं भी सुन रहा हूँ सर, शुक्रिया सुपर सॉन्ग, और मैं भी जुड़ गया हूँ जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से बिहार से रहने वाला हूँ, और मेरा गाना है ये रेशमी जुल्फे और ये सर्वती आँखें, तो बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, भारती जी कबले इंतज़ार करे के पड़ी, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है निजामुद्दीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं मेरा सॉन्ग बस सकता है क्या, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला फरमाइश पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते, मैं मोहित कुमार चैन पट्टी गोपालगंज से, मुझे रेडियो रिमझिम बहुत अच्छा लगता है।

और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। अभी मैं 17 इयर्स का हो गया हूँ और गाना और मुझे रेडियो रिमझिम के सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं हरियाणा बहादुरगढ़ में पढ़ाई कर रहा हूँ और हॉस्टल में, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जितना ही मिलता है मैं कोशिश करता हूँ रेडियो रिमझिम को सुनूँ। और आज मेरा कोई भी गाना सुना दीजिए, पवन सिंह का कोई भी नया सॉन्ग, और मेरा तरफ से सभी को राम राम और धन्यवाद। मैम मोहित मैम, प्लीज़ मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए। तो मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मोहित जी। और इसी के साथ आपके गाने को प्ले करेंगे पवन जी के आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना मोहित जी की तरफ से पवन सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मैं राकेश भारती बक्सर से, और मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा रितेश पांडे जी की आवाज़ में, जाए चंदा ले आवा खबरिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि क्या मैडम आज मेरा सॉन्ग बज जाएगा? तो जी बिल्कुल बजेगा, और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैडम जी इंतज़ार करके थक गया हूँ, कब तक बजेगा मेरा गाना? तो ऐसा नहीं है, आज ही आपका गाना प्ले होगा, और मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरा गाना न्यूज़ के बाद बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी, तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं। और गाना है कि हुआ के बानी फिलहाल, तो चलिए प्ले करते हैं गाने को और सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी, वक्त और प्यार दोनों ही बहुत खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार किसी से नहीं होता। तो बहुत खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ नई अमन सारी जमतारा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँच गया है कि दिनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, कि लिख रहे हैं कि हु और के बानी फिलहाल इस सॉन्ग पर थोड़ा गुनगुना देती तो कितना अच्छा लगता। तो कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान से पकवलिया टोला बलुआ से हूँ। मेरा गाना का फरमाइश है कल्पना देवी की आवाज़ में, कुछ दिन रहिए ये बलम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राम राम भारती जी मैम, क्या हाल है, क्या हाल बा। तो हाल तो हमारे बढ़िया बा, रुआ बताएं रुआ किशन बानी। और बहुत बहुत स्वागत बार रुआ। और भारती जी तो मेरा गाना सुनाओ भारती जी, अपनी बारी का थोड़ा वेट कीजिए। और हमारे पास यहाँ

और हमारे पास यहाँ एक और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते, रियाज कुमार यादव। रियाज कुमार यादव बिहार मुजफ्फरपुर मोतिहारी से, सॉन्ग का नाम है अपना बारे में पीवा कुछ ना बताया है। तो यहाँ हमारे पास केवल आज इस समय तो भोजपुरी सॉन्ग की फरमाइश पहुँच रही है। चलिए कोई नहीं, आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के सॉन्ग।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अपने बारे में, भी हुआ कुछ ना बतावे है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग, वैसे ना बताइहन तो ड्रम में जाइहन। ये बात तो अभी फ़िलहाल सही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रम में नहीं तो कहीं कहीं मिल ही रहे हैं। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि पानी में आग लग जाएगा भारती जी, ऐसी बात है तो नहीं, आग नहीं लगने देंगे। और लिख रहे हैं कि जी मैम मेरा सॉन्ग में थोड़ा गुनगुना दीजिएगा। और मैम चार चांद लग जाएगा, बहुत क्यूट आवाज़ है आपका और सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, प्रवीण कुमार, जिला सिवान, बहुत बहुत धन्यवाद सॉन्ग प्ले

ये। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा मैम। तो यहाँ लिंक के माध्यम से इनका सॉन्ग पहुँचा हुआ है और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुमार जी। तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं। और ये भी शायद भोजपुरी सॉन्ग ही है। और गाने के बोल हैं प्यार व्यापार हो गया। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि दिलीप राम जी की तरफ से यार लिख रहे हैं, किस्मत कहाँ से मिले वादा कर जो तोड़ देते हो। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। चलिए लेते हैं कॉल, सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: क्लास मूवी का गाना सुना दीजिएगा।
0: कौन सी मूवी का?
1: तलाश।
0: तलाश मूवी
1: जी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको भी।
0: और आप नहीं बताइएगा इसमें का कौन सा सॉन्ग सुनेंगी? आप नहीं बताइएगा कि इसमें से कौन सा सॉन्ग सुनना है इसका?
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं,
1: थैंक यू,
0: एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सिर्फ हाय लिख के भेजे हुए हैं। और बन्नू प्रकाश ओम शर्मा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं क्या इरशाद मास्टर लिख रहे हैं कि क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होता है, रेडियो वही सुनता है जिसका नसीब होता है। इरशाद मास्टर ग्राम धनाव रोशन टेलर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम मेरा गाना कब बजेगा। और अभी आपके गाने का टाइमिंग नहीं हुआ है, तो आप सभी को पता ही है सबका एक हफ्ता होने पूरा होने पे ही बजता है। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, यह गाना सुनना था देवी की आवाज़ में। मैं मनुआ के ललसा पुरादी राजा जी डेडिकेट है सुरेश महतो, गुड्डू गुप्ता, सुनील शर्मा और मैम 3 घंटा हो गया और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं गाना सुनना है शिल्पी राज की आप बर्बादी सॉन्ग। और मैं दीपक जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ चुका हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दरार मूवी का गाना सुनना है, बजा दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए बिना देरी किए दरार मूवी का ये सॉन्ग प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं आप सभी के साथ।

अभी हम लोगों ने पवन सिंह की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना, दिल धड़का था केहू के प्यार में दरार मूवी का। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। और वैसे जब दिल लेके जा रहा था परदेसी, उस टाइम चिल्ला दिया होता चोर चोर तो पकड़ा जाता, अब तो ले गया बोतल में भर के। क्या बात है। और इसी के साथ नाइस सॉन्ग अपकमिंग और नाइस सॉन्ग दरार मूवी से। तो चलिए बिना देरी किए अगले फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे साथ अभी हमारी आरजी मनोरमा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और अगला फरमाइश यहीं शामिल करेंगी और गाना प्ले करेंगी।

नमस्कार, मैं हूँ मनोरमा और अगला मैसेज है धनंजय कुमार सिंह, जो जिला सिवान पकवलिया टोला बलुआ से हूँ। और मेरा गाना का फरमाइश है कल्पना देवी की आवाज़ में, कुछ दिन रही है बलम जी। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं।

0: तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, घरे छुट्टी लेके आई है बलम जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग है, और इस मैसेज को मनोरमा जी शामिल करेंगे।
1: हमारा अगला मैसेज है मोहम्मद रियाज जी की तरफ से, और यहाँ बहुत अच्छा खूबसूरत शायरी जो लिखे हैं। दिल से चाहा था जिसे वही दर्द दे गया, हंसते हंसते मेरी हर खुशी ले गया। वफा की उम्मीद थी जिस इंसान से, वही मुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया गया।
0: और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि

और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आज़ाद कमाल घर बिहार जिला बेतिया चौकटिया 5 नंबर वार्ड से, और बहुत अच्छा गाना बाजा था। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, कल का मेरा फरमाइश हुआ है कि नहीं मैम चेक कर कीजिए क्योंकि मैं उस टाइम रेडियो नहीं सुन रहा था, तो बिल्कुल चेक करके बता देती हूँ। और हमारे पास अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय गुड इवनिंग मैम, हम टुनटुन यादव विलेज पठानपट्टी पोस्ट पठरा जिला गोपालगंज गोपाल बिहार से बानी, अभी गाना सुने के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर तुम मेरे साथ हो। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा गीत।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपाल।

0: बोले। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में।
1: तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज को शामिल करते हैं। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना चला दीजिएगा मैम जी, और सिंगर हैं देवी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका गाना शायद मैंने प्ले किया था तो आज तो नहीं कर सकती। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं भारती जी आइए इंडिया गेट देख लीजिए। तो आप ही घूमिए और मैं आ गई तो शो कौन चलाएगा, सोने जी भी नहीं है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, का हाल बा मैडम जी। तो मेरा हाल तो ठीक है, आप अपना बताइए आप कैसे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

ये मैसेज हम मनोरमा जी के लिए और लिख रहे हैं कि धीरे धीरे ले चुप चुप रहने से आवाज भारी हो जाता है, सो आप ऑफ माइक में भी बोलना जारी रखें मनोरमा मैम। बाकी भारती मैम बहुत बहुत धन्यवाद, एक दम 85 की स्पीड से इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, अच्छा लग रहा है, लगे रहिए दोनों भारती और मनोरमा जी, बेस्ट अपलॉग और अच्छा हुआ। तन्हाइयों में छोड़ा गया, कुछ लोग पहाड़ों से भी छोड़ रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम रोर मैसेज रीड कर देना, रो मैसेज रीड कर देना, सॉन्ग चले आना कोई बात नहीं।

दिखे का चाहत इन टावर धरे के पड़ी का ना ऐसा कोनो बात नहीं है, टावर ना धरे के पड़ी और मैसेज सबके शामिल करते नहीं, थोड़ा टाइम दिलो हमरो के। और हमारे पास यहाँ एक और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिंक के माध्यम से और मैसेज करने वाले हैं रियाज नेपाल से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने के बोल हैं कहाँ गए ममता भरे वो दिन, तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं गाने को और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: हाँ जी बोलिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
1: पृथ्वीराज का गाना।
0: वैसे आपका नाम क्या है?
1: पृथ्वीराज। हाँ जी, परमात्मा कुमार।
0: अच्छा, और गाना कौन सा है पृथ्वीराज का?
1: पृथ्वीराज का कोई बढ़िया गाना।
0: आप बता दीजिए, आप कॉल किए हैं तो।
1: नहीं नहीं, आप ही सुनाइए। हो तो एक आपका नंबर होने लगता है उनका। वो जो क्या नाम उनका मैडम का, छुट्टी पे है का?
0: कौन छुट्टी पे है?
1: कोई भी सुना नहीं गाना वो।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बता दीजिए किसे
1: और क्या मिल रहा है।
0: गाना किसी को सुनाना भी है?
1: गाना संतोष दिल्ली और
0: जी जी। चलिए फिर, आपका गाना प्ले कर दिए हैं। एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम पे।

0: तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग शिल्पी राज की आवाज़ में, बर्बादी सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा गाना सुना दीजिए भारती जी। तो आज तो आपके गाने का बारी नहीं है तो मैं नहीं बजा सकती, प्लीज़ अपनी बारी का वेट कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग भारती जी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं, का हाल बस सोनी जी। तो सोनी जी तो बहुत ठीक हैं और लिख रहे हैं थैंक यू सो मच बजाने के लिए। और बर्बादी वाला गाना धमाल मचा देती हैं भारती जी, तो इन्जॉय किया आपने गाने को, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ बाय बाय के मैसेजेज आने लगे हैं। और चलिए बिना देरी किए हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि कॉल के माध्यम से है, तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते। और गाने के बोल?
1: गाने के बोल है नजरिया बचा के भैया, यही लाइन में जाना है रमे पाँव भैया नजरिया बचा के।
0: एक बार और बोलिएगा,
1: नजरिया बचा के भैया, कोई सा गाना बजा दीजिएगा वो।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? ओके, चलिए आपका गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ अपने गाने को।
1: ओके, पहली बार आपके पास
0: ओके। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और हमारे पास यहाँ बहुत मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं वाह टाइम ऑफ होने को है और अच्छा लगा ये घंटा, मज़ा आ गई, वाह बाय। और इसी के साथ हम भी लेंगे आप सभी से विदा। तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से मैं पहले बता दूं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जरिए जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए मैं आप सभी से विदा लूँगी और सुनते रहिए प्यारा सा सॉन्ग।

0: शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: 9.4
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: ये रचना संत कबीर दास जी के बाद। कबीर दास जी बतावतारन कि आवागमन से मुक्त अगर फल चाहता रह तो एगो शर्त बा। आवागमन से मुक्त होकला के मतलब कि ब्रह्म से मिलन। कैसन शर्त कबीरदास जी रखतारन, सुनी एक गीत के माध्यम से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए, और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं,
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष

0: इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर, पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
5: मैं बोलता हूँ पठानपट्टी से।
4: कैसी हैं आप?
5: ठीक बने आप?
4: क्या होता है अभी?
5: अभी खाना पका था।
4: अच्छा, नाश्ता हो भैल की ना?
5: ना, नाश्ता हो भैल बा। अब दाल चावल बनी, सब्जी रोटी बनने सुबेरे लड़का या सलाम करे बोले। और सब ठीक बा? नाश्ता तो भैल मैडम।
4: हाँ, हम लोग के हो गई बाबा।
5: जुमाला रिकॉर्डिंग आधे बाजल बना।
4: हाँ, आधा बाजल आवे और थोड़ा सा बावे दो चार को कॉल तो अनाज बाज दे।
5: हमरो बाकी है ना। कल तो पाप हो गए बच भी स्ट्रेस रे। मैम गाना बजे का बर्थडे वाला
4: सॉन्ग।
5: हाँ
4: बता दी, केवल बर्थडे बावे?
5: बेटी के बर्थडे बा।
4: अच्छा, बेटी की क्या नाम है?
5: रोशन तारा।
4: अच्छा,
5: ने खुशी कहे लो स्कूल में नाम लिखा रोशन तारा।
4: अच्छा जी, हम परिवार की तरफ से हुआ बजी के हार्दिक बधाई
5: बा।
4: कौन सा गाना सुने तो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजा दी का?
5: हाँ बजा दी बर्थडे वाला। देखे तो था तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। वही वाला बजा दी।
4: अच्छा जी,
5: स्कूल गए लिए तो बोल के गए लिए मेरा बर्थडे गाना कही दो दिन हमारे गाना बजे। बुध के दिन है?
4: बुध के हवे।
5: हाँ
4: अच्छा, चलिए ठीक बा।
5: हाँ तो कौन आज कौन सा दिन बाज जाए ना, तो फिर तो कल तो बजी बाजी की ना बाजी कौन ठीक नहीं के। बोले कह दुनिया
4: चलिए
5: एक हफ्ता बाद देख लिया। ठीक बा। और सब ठीक बा?
4: और सब ठीक बा।
5: चलो तो ठीक बानो। गाना बाज जाए
4: उदिन। हाँ हाँ बजा दें।
5: बजा दें गाना।
4: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: ठीक बा।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: अब मैम हमको सॉन्ग सुनना है आज।
0: जी बता दीजिए कौन सा।
1: इतिहास पिक्चर का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: इतिहास मूवी का कोई भी सॉन्ग।
1: जी
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट रहेगा?
1: पहले तो आपको अति मैम बोले है ना, और जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में सुनना चाहता हूँ। हमारा नाम पड़ेगा ओम साई टेलर राघव जी बंजारी रोड पुलिस के सामने गोपालगंज।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो, भारती जी बोल रहे क्या?
10: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
11: जी मैं महाराज से जमुना प्रसाद बोल रहा हूँ।
10: जी
11: मुझे गाना सुनना था।
10: बता दीजिए।
11: वो जाने वाले हिना फिल्म का है, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, तो सुनवा दीजिएगा।
10: बिल्कुल, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
11: डेडिकेट रिमी परिवार को, आराध को भी, सुनी सुबह को।
10: ओके
11: जी, और कब तक सुनाइएगा मैडम?
10: आपको ये सॉन्ग कल या आज सुनने को मिल जाएगा, मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच जो बजता है ना उसी में।
11: जी जी जी, और मैडम सबको अच्छा है ना?
10: हाँ हाँ सर, सबको अच्छी है।
11: जी जी,
10: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
11: जी मैडम।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे, आपका शौक इंतजार करते हुए।
0: कौन सा गाना सुनना है
1: जी आज हमको? सुनवा दीजिएगा गाने के बोल है मैम।
0: बता दीजिए
1: जी, फिल्म जीरा सुनवा दीजिएगा मैम। तू धरती में जाए कहाँ भी रहेगा, धड़कन से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दो लोगों से, सभी दोस्तों के साथ मैं करें मैम।
0: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा, सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है। इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में। जी नमस्ते, मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
11: गाना सुनना था, गीता था, कैसे मिले तो मुझे बता रहे
10: हैं। और उस सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नम्रे भाग्य मैं
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 91.4 एफएम में।
0: मेरा नाम मोहम्मद वड़ा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, तो बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: गाना सुनना है दिल दीवाना ना जाने का खो गया फ्रॉम द मूवी दागर फायर।
1: ओके,
0: आपने खाना खा लिया?
1: हाँ हम खाना खा लिए हैं, आप खा लिए?
0: मैंने खाना भी खाना है, अभी नाश्ता करना है।
1: अच्छा, अभी नाश्ता कर रहे हैं?
0: हाँ जी, मैं स्कॉटलैंड कंट्री ग्लास सिटी से बोल रहा
1: हूँ।
0: इंडिया में सब बढ़िया है, मौसम कैसा है इंडिया?
1: इधर मेरे तरफ तो अभी गर्मी है, धूप भी है।
0: ठीक है, कॉटन ग्लास तो में अभी सर्दी है और ड्राई।
1: अच्छा,
0: भगवान आपको खुश रखो, मिले वो बिना लगा देना दिल दीवाना ना जाने का खो गया।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंजिंग में कॉल किया।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894-18744।
10: Now pick your phone up. Hello? Pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी हम बनारस से रंजन।
2: जी क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो बढ़िया है, आप सुनाइए।
2: मेरा भी ठीक है,
1: बस सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो रंजन को, अपन काम सब कर रहे हैं। जी हो गया तो मिलाए।
2: बता दीजिए गाना कौन सा सुनिए।
1: सुनवा दीजिए बिना शिकाना का।
2: कौन सा सॉन्ग?
1: उसमें तो वो वाला किसे दिल का दुश्मन समझते रहेंगे।
2: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
1: जी आपको जितनी श्रोता सभी को सुनवाएंगे।
2: ओके ओके, चलिए फिर गाना शुरू करते हैं। सुनते रहिए आपके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: मत रोना छोड़ के जाने वाले थे, मत रोना छोड़ के जाने वाले थे, खुद ऐसा वक्त निकाल लिया देना जो खुद ही मिलना है तुमसे ना मिलने के बहाने। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: तो नाम नसीब है तफरी सुल्तान डिस्ट्रिक्ट सिवान से।
1: मैं ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं और सब बढ़िया। सब तो हो गया।
1: हाँ हाँ, नाश्ता हो गया है।
0: मैं तो बहुत दिन के बाद जुड़ा हूँ, काफी दिन हो गया था, तो आज मैं जुड़ा हूँ। आप भारती बोल रहे हैं? हाँ, मैं पहचान लिया। देखिए आप, हाँ रोनी जी तो शो कर लिया ना, फिर वैसे चॉइस।
1: हाँ अभी तो छुट्टी पे है तो हम ही कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कर लिया। घर परिवार सब ठीक है?
1: सब कोई ठीक है।
0: दिल्ली आए हैं? कल दिल्ली आए। कल मेरा पेपर है।
1: अच्छा,
0: पीएल ट्रिपल एस डी एम पेपर नोएडा में पड़ा है, पेपर दे के दिल्ली में रुकना है। कल मेरा पेपर है। हाँ कल मेरा
1: पेपर है,
0: पी ट्रिपल एस डी एम पी एस जॉब के लिए। उसी साल में भरा था, कल पेपर नोएडा में पड़ा।
1: चलिए तब तो ठीक है।
0: हाँ तो कल ही आया दिल्ली, पेपर बोलते और सब बढ़िया था।
1: मैं
0: सुन भी नहीं पा रहा हूँ ना, सुनता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है।
1: अच्छा,
0: ये क्या बोल रही थी? कुछ बोल रही
1: बोल रहे थे, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हाँ गाना हमको सुना दीजिए। फिल्म का नाम है इने किरा
1: और गाने के
0: सॉन्ग है आने से हो क्या आएगा।
1: और सॉन्ग डेडिकेटेड है।
0: हाँ सबसे पहले आपको अजय धोनी, अजय सोनू भाई, अतरी गुरिया, परमीन हलीमा सजिया और रबीना सफा सिद्धि, राजा परिजन पारी, सबनम सिद्दीकी, रुदार निशा सुकुनुआ, निशा भारती और समीर आलम, गुलाम हुसैन, दिलीप राम, अंसारी सऊदी, सजीर अलम अंसारी, भाकर बरजू, उमर शंकर, दिगंदर मुखेश, उमर सोनी, ये सबके साथ सुनना चाहता हूँ।
1: और
0: सुना दीजिएगा। चलो आपसे बात करते हैं। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
11: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो।
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 92.4 FM में।
13: जी नमस्कार।
12: नमस्कार,
13: मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से।
12: हाँ जी, कैसे हैं आप?
13: अच्छे हैं, अपना सुनाइए।
12: हम भी अच्छे हैं।
13: क्या मौसम है बिहार?
12: अभी तो मेरे यहाँ गर्मी है, धूप भी है वैसे ही।
13: अच्छा, बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
12: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है।
13: इधर महाराष्ट्र में तो ठंडा मौसम है, हवा भी तेज चल रहा है और बारिश भी हो रहा है।
12: तब तो बढ़िया है, ठंडा मौसम
13: मिला जुला के बहुत सुहाना मौसम है।
12: ये सब तो ठीक ही है।
13: तो भारती भी बोल रही है ना।
12: और
13: गाना था, एक गाना सुना दीजिए, फूल और कांटे का।
12: गाने के बोल
13: लेंगे तो मिल जाएगा, ये गाने का बोल है। और डेडिकेट रहेगा सबसे पहले आपको रहेगा
12: जी,
13: सोनी मैन तो रहेगा, संजय दुबे तो रहेगा, और जितना भी डिनर है सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
12: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
13: धन्यवाद, नमस्कार
12: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं ज्योति साहू बोल रही हूँ मधुसूदनगढ़ से।
1: हाँ जी, कैसी हैं आप?
0: बस बढ़िया है मैडम जी, आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, खाना बन रहा है अभी तो।
1: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है,
0: आइए आप खाइए खाना।
1: बिल्कुल, आप लोग खा लिए मतलब हम भी खा लिए।
0: अभी नहीं खाया, हम खाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी बना रहे हैं।
1: चलिए कोई नहीं, हम भी उसी टाइम खा लेंगे।
0: ठीक है, मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना ये। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
1: जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: आपको भी है मैडम जी, और हमारे पति को भी है, और भी जितने भी सुन रहे हैं उन सबके लिए आइए गाना।
1: जी बिल्कुल जी, चलिए फिर आपके गाने को प्ले करेंगे। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखे
3: सीधी। तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87-894-18744।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू रंजन 90.4 एफएम में।
13: और हम अमर कुमार सोनभद्र से बोल रहे हैं, सॉन्ग सुनना था।
14: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग?
13: अरे लग गया, हम तो ट्राई कर रहे थे, कल नंबर हमने एड किया और आज हम ट्राई किया, आज हमारा लग गया कॉल। उधम बोल रहे हैं
14: जी?
13: आरती बोल रहे हैं?
14: भारती बोल रहे हैं।
13: अच्छा अच्छा, चलिए मैंने ट्राई किया, देखिए हमारा कॉल लग गया। कुछ एक सॉन्ग सुना दीजिए।
14: बता दीजिए,
13: छेला बिहारी का है, नाचे कंवरिया सिद्ध के नगरिया बनके गुजरिया रे।
14: ओके, और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा?
13: डेडिकेट आपके लिए और पूरे जो रिमझिम रेडियो के श्रोता है, सारे कुछ दोस्त है, संगम केसरी, आनंद केसरी, दोनों दोस्त लिए।
14: चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है
0: जी। नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
0: मुझे गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: भोले वो गाना सुनना है। लेकिन गंगा जल शिव देव जाएगा, भोलेनाथ से बम किस पर पाएगा। ये गाने का बोले मैडम।
1: ओके, और
0: सबसे पहले तो आपको, बाकी जितने भी हमारे प्रेम जी रेडियो श्रोतागण है, सभी को सुनाना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोग सुनना चाहता है इस गाने को।
1: ओके जी, चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
8: मैडम।
7: नमस्कार
8: मैडम जी। मैडम जी मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना, मध्य प्रदेश।
7: हाँ जी, क्या हाल चाल है?
8: बस मैडम जी, बरसात हो रही है और रेडियो सुन रहे हैं।
7: अच्छा
8: जी, और दुकान पर ही है, दुकान है अपनी, सिलाई मशीन बेचते हैं, जैक चूल्हा बेचते हैं और थोड़ी बहुत सिलाई भी करते हैं।
7: अच्छा, तो अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनिएगा
8: जी? मैडम जी, पिक्चर का नाम है राजा हिंदुस्तानी।
7: और गाने के बोल?
8: गाने के बोल है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करे थे सारा।
7: और सॉन्ग डेडिकेट है
8: जी, सबसे पहले आपको है और अपनी एक मैडम जी है सोनी जी, अभी भारती जी है। आप कौन? भारती जी है, सोनी जी है?
7: भारती।
8: हाँ, तो आप दोनों को डेडिकेट है। हमारे गजरा सिंह लोधी जी हैं और मांगेलाल जी है और गोपाल ओझा जी है और जीतन धाकड़ जी है और हमारी मैडम ज्योति साहू जी के लिए गाना कहते हैं खास करके लिए।
7: जी जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4।
8: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। मैं चिरमिरी कुवारा कालरी जिला कोरिया
0: छत्तीसगढ़ ऐसी इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ।
0: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: फिल्म का नाम है जख्मी और गीत बोले जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, अजय दूरी चोरी चोरी अब तो रहा न जाए रे, गाय किशोर कुमार आशा भोसले, ये गीत है मैडम।
0: ओके, और कौन किसी को डेडिकेट है?
1: सबसे पहले गीत आपको, फिल्म निर्देशक साहब को, पूरे भारत कार्यकर्ता को, रेडियो रिमझिम है मैडम। सभी दोस्तों भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, श्रोता को, पूरे भारत श्रोता को स्वामी के धन्यवाद। इसका प्रसारण कब होगा मैडम?
0: इसका प्रसारण आपको आज नहीं तो कल हो जाएगा।
1: कितने बजे?
0: शाम को 5 बजे से 7 बजे होता है और सुबह में 9 से 11 के बीच।
1: 9 से सुबह 9 बजे होता है?
0: सुबह में 9 से 11 के बीच होता है और शाम को 5 से 7 के बीच।
1: मतलब ये आज आएगा 5 से की कल जाएगा?
0: आज नहीं तो कल, दोनों में कभी भी आ सकता है।
1: जी जी, 5 बजे 9 बजे। ठीक ठीक,
0: रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
4: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
10: Now pick it up, now pick your phone up. Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-9911। जी हाँ, 8029-9911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: हेलो,
14: बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: नमस्कार मैम।
14: नमस्कार,
15: गाना सुनना है,
14: बता दीजिए कौन सा।
15: अलग दिखला जाए दरवाजा,
14: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुन करिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
0: जी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग
0: विकास कुमार हिंसापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं मैम?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: सब बारिश हो रही तो रहा मैम?
1: बारिश नहीं हो रहा है इधर,
0: बारिश नहीं हो रहा है, धूप निकला है ना।
1: धूप भी है और गर्मी भी है।
0: हमारे तरफ तो नोएडा में बहुत बारिश हो रहा है।
1: अच्छा, थोड़ा इधर भी भेजिए ताकि हम लोग को भी राहत मिले।
0: भगवान के पास फोन करते हैं।
1: अच्छा कीजिए, देखिए लग जाए तो अच्छा ही है।
0: बोलते हैं कि भगवान चला जाइए गोपालगंज जिला में।
1: और सब ठीक है ना?
0: और सब बढ़िया मैडम, और सब बहुत मस्त है एकदम।
1: जी जी, सब चलिए। गाना बताइए कौन सा सुनिएगा
0: आज? गाना सुनवाइएगा राखी का, वो पुराने सॉन्ग नहीं
1: है। गाने के बोल कुछ याद है?
0: इसे समझो ना।
1: अच्छा, इसे समझो ना रेशम की डोर भैया।
0: जी जी जी, बहुत बहुत प्यारा गाना है एकदम टीचर के लिए।
1: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है।
0: लेकिन मैम एक बात बताऊं?
1: बताइए।
0: परदेश में रहता है ना, कला बहुत उस दिन बहुत याद आता है, बहुत
1: बहुत याद आता है जब रक्षाबंधन आता है, भैया घर पे ना हो।
0: लेकिन इस बार चले जाएंगे हम, ये एक दो दिन के लिए चले जाएंगे। टीचर के बोले टीचर से कि टीचर मेरी दो है, उन लोग को शादी हो गया
1: तो वो लोग आएंगे कि आपको जाना पड़ेगा?
0: हाँ, तो दोनों हम भी गाड़ी ले जाएंगे। चले जाओ नीचे, सब रेडियो रंजन सुनने वाले उन लोग का सफर घुमाना चाहते हैं आप। सबसे पहले आपको
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: Hello.

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रेवरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा छोटे वर्जा भार। रवा सवे के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे के कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथे राव दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ सोटी बिरजा भार के।
1: देख एक के बराबर हम गिराए
2: चल ए
1: देख है तुरला बनी अब गिराओ तनी
2: अब देखो देखो तनी
1: देख जोगिया चलाओ तक गुड़ हाथ
2: आ
3: आ आ आ हे भगवान ई का हो गई ई का हो गई हो

जाते भगवान हमरा रहल लेके जा बीच से हमार तन तन फाटता है प्रभु। हे प्रभु अब कहाँ जाए हम, हमार ब्याही हमके बहुत मना कैली लेकिन उनके बात ना मनी, अपने मामी के बात ना मनी। ओ जा मामा, आज तोहरे कारण हमरा ही बुझाता जे फिर लौट के हम घरे ना जाए, फिर हमरा माई से भेंट ना होइए। मामा तुहरे सब काल ह, तोरे कार ह, जौन कि आज है ठूठी पकड़ी तर केहू हमार सहारा नहीं खे, हमके नागिन डस लले बा। अब हम कहाँ जाई, अब कहाँ जाई। हे भगवान आ आबो जू बिरजा भार रो करके का कहतरन आ कोने तरह से। अरे हमरा के आरे डसली

0: हम का देख तनी बाप रे बाप जोगी तो आज जा मर गई लेकिन लेकर दोनों नयन खाए आ तब हम अमर हो जाए लेकिन एकरे नयन खैले से पहले एकरे झोरी में दूगो पाकल पाकल सामान लौकता पहले वो दोनों सामान में खाई पकल का तब दोनों नयन निकल के खाई।
1: अरे किया हो रामा अरे जोगिया के झोरिया में

0: अरे दौरी है नागिन रे, अरे ऐसा सिपाही हम ना देखले रहनी हो दादा। अरे दादा रे, अरे गंगा राम के कड़ा, अरे हमारा ही कटाई धके दबले बरे दादा, जल्दी है पीख खींच रे न तो हमार जान मार दी, छोड़ दे रे दादा। अरे बाप,
1: ओए तेरे धैले रे दा, सुन अब तक से बतावा तानी
0: करे।
1: हां भैया बनाई पीख खींचो
0: करे,
1: तब से हमार थुन थुन फुरवा उतरला, अब तू जानो तार का।
0: अरे नागिन, अरे जल्दी बीख खींच रे ना तो हई गंगाराम केकड़ा हमरा के जियत ना छोड़ी, जल्दी खींच रे, जल्दी खींच रे दादा, जल्दी
1: खींच के परी।
0: हां
1: ना मरवा,
0: हां खींच रे, ये दा बता दोनों से उठा से देख दे, काटो ता काटो ता काटो ता। अरे बाप रे,
1: ना मरवा,
0: जल्दी खींच
1: रे, सॉरी काट ले दो करा के
0: दबलस रे दादा,
2: मर जाए तो, मर जाओ तो ने ठीक बा,
1: मर जा तो हमरा ये ठीक लाते है। एक आग भैया
0: को
1: आके मर जाइबो
0: को,
1: आइ पाप का हो गेल हो दादा
0: को,
1: आ निराल में का तारो। कहो टिकिया खींच ले लेकर,
2: खींच ले, खींच ले,
1: तो मर जाएगा बाल बच्चा। अच्छा चलो ले, अब हम भी खींच ले तनी,
2: मैं तो अगर बाल बच्चा उखर पर जाई
1: दिख जागल। चलो एक काग भैया।

0: बाबूजी बिरजाभार राम राम कह के खड़ा हो जाता है आ कहत रहे नागिन से किए नागिन आखिर हम कौन कसूर कैले रही है कि तू हमरा के डस ले रहू है। आबू जी नागिन का कहत रही
1: ए काक भैया देखो तू कौन कसूर ना कैले रहो हम खाली है कगवा बादल के कहले पर डस ले रही हो अब तो से का कही ए कगवा बादल हमरा के चढ़ा के तारा के डसोलो सो आ तारा के मुओलो सो हम ही जानत रही हो कि अगर हम डस ले तो भगवान की हाँ हमार दोष लागी लेकिन खैर अब तो हम डोस लले बनी जौन गलती कैले हो की ओकर सजा तू दे सकेला हमके।
0: आबू जी बिरजाभार कहा तड़े कि जा अगर तू अपने कारण से नहीं खुद डस ले कागवा के कहले से तू डोस लले बड़ू तो हम तारा के छोड़ा तनी छोड़ देता नहीं जिया दान ना तो अगर अगर तू अगर दूसरा के कहले पर डस दहलू लेकिन एगो बात तरह से बता देता नहीं कि आज के बाद ई ठूठी पकड़ अमर रही अमर रहले के बाद आज के बाद जे भी मुसाफिर ई रास्ता से आई जाई आए अगर फिर तू डसले के कोशिश करबू तो तहरा के हम जिंदा ना छोड़ब कबो ना छोड़ब। अब वहाँ से बिरजाभार अपन रास्ता धल ले बने अबे जी एगो
2: ए जोगी बाबा
0: हाँ
2: कहाँ रास्ता धरो महाराज
0: हाँ
2: हमरा से सुनी
0: हाँ कहा तू
2: एगो चुटकीला सुन लिया कि जना पंडित जी रहनी
0: हाँ
2: तो वहाँ के दिन भर
0: हाँ
2: मैंने चलवाही करी
0: हाँ
2: आसाजी के जब घरे आई
0: हाँ
2: तब पंडिताइन का करे
0: हाँ
2: कि उनकरा के नून आ रोटी दे खाए खातिर
0: अच्छा
2: रोज के बात रहे कितनो चलवाही में से ले हमें जनी रुदल भाई जी लेकिन उनकरा के नून आ रोटी दे दे सुखले पंडित जी बैठ के चबाइल करे
0: हां
2: कहन का कि बाप रे बाप सब हमार कमाइल व्यर्थ बा अनिर बा इतना चलवाई चलवाही में से चाउर दाल अचार टमाटर मरचा भंटा गोभी सब कुछ ले आवतनी आ काज ने का को कहतड़ी जब खाए बैठतनी तो हमरा के नून आ रोटी धारा देतरी सुखल है आई है बात सोच के कहले कि अच्छा कोनो बात नहीं के हो सकेला कि दुगो लइकनी सयान बाड़ी सन ओ कनिए खाती बिटोर के धरत होए कि सयान होए स त ये कुल बेच बिकनी के बियाह में लागी
0: हां
2: हां ननी मार साहब इस्माइल जी
0: हां ठीक है कहतनी
2: बस ये सोचत वहाँ का फैन चल गई चलवाही में
0: वाह
2: आयने पंडिताइन का करे नी माता वा
0: हाँ
2: कि जितना सामान रो है ओकरा के ले आके दुकान पर बेच दे आ बेच के दूध आय आनंदी के भूजा के नाम सुनले बानी लोनी
0: हाँ हाँ सुनले
2: बानी के मंगवा में
0: हाँ
2: आ का करे दूधे में आनंदी के भूजा डार दे
0: हाँ
2: आ केवाड़ी लगा दे आ घरे तक के उरो है नहीं अब कहे ओकरा से
0: हाँ
2: कटोरवा से
0: हाँ
2: कि कहो कहो ए धाने आनंदी
0: हाँ
2: आनंदी या भूजवा से कहे दूधवा में डार दे तो
0: हाँ
2: कहे का कि कहो कहो ए धान आनंदी आ घरे सासुना ननदी मटकाई भला धान आनंदी बोलो कि मटकाई और खूब लेके गोपर गोपर खूब सटर सटर खाए खूब खाए आए ने पंडित जी वे जो रहे तो दिन भर फेराई करे चलवाही करे घरे आता चटनी पावे आई थी
3: रहुए तरे
2: नहीं भाई हमरा घर तो निमन भेटा जाला ठीक नू अब तो ये करे रोजो के कार रहे तोले एक दिन यही तरह का कैली कि कटोरा में दूध धो के आई में आनंदी के भूजा गिरा के आ जब ही कह तरीका कि कह कह ये धान आनंदी आ घरे सा सुना ननदी मटकाई तले पंडित जी आके पिछवे से सुनत रहनी कहनी बाप रे बाप हम घरे आवतनी त नून या रोटी खातनी आ देखो तनी त पंडिताइन का कहतड़ी यानी मातवा का कहतड़ी कि कह कह ये धाने आनंदी आ घरे सासुना ननदी मटकाई कौन ची हो ये दादा हमारे घर में कोई दूसर नहीं खेल कुछ ले आके दे।
3: अच्छा।
2: बस फौरन केवाड़ी खोल के आके देखो तनी वहाँ का पंडित जी तो मार जे दूध आयो नंदी के भूजा मार जे सट सट लेके मटकावत रह गोबर गोबर खातली मार जे नाके पर से नुखा हाबुर हाबुर
0: बड़ा खवाई कर रही
2: है तेरे माल गोरु खा ले सन। अब तो पंडित जी कहले कि अच्छा सब कमाई हमारी है नु बेचतिया।
3: अच्छा।
2: बेच के दूध है आनंदी के भूजा लिया के खाती है रुको एकर जुगाड़ अब हम करम। बाहर निकलने आ एगो सौसे भारी बांस का कैले चीरले आ चीर के एगो बांस के सोटा खूब बढ़िया फाठा बनवले।
3: हाँ।
2: ठीक। आ फाठा बना के अपने पीठ के पिछुआरे लुकवा लहले।
3: अच्छा।
2: आ जे ही पंडित आयन जब कहतारी कि कहो कहो ये धान आनंदी आ घरे सासुना ननदी मटकाई तले ओई तुक से पंडित जी कहतनी का आ कहो कहो ये बांस के सोटा घरे बाप ना बेटा धमकाई तो लगनी वहां के धमा धमा नु मारे।
0: वाह वाह।
2: बस पंडित आयन ओई दिन सुधर गईली।
0: अच्छा ते इतना बात तो रोगा कोई दनी हो
2: बाबा हो।
0: हाँ
2: एक रुपया में से कटल
0: ठीक बा कट गई। अब तो हम एक बाद जा रहल बानी रास्ता धके लेकिन एगो भजन सुना देता नी
2: सुनाई
0: आ सुनावले के बाद रौरो सोचल करब हमार तो सूरजपुर के तैयारी।

0: बच्चे वाला हमनी के देखा बाबू, संसार में हर लोग महात्मा जी के नजर में बच्चा ही रहला, बूढ़ से जवान तक, लड़का से सियान तक।
1: सुनो, हम बच्चा ना होई।
0: तू का हुआ?

0: सब लोग बच्चा बोले बा
1: साधु बाबा लोग के निगाह में
0: सभे बच्चा में देखो हाँ। हारमोनियम बजाओ तड़े वो हमनी के निगाह में बच्चे हुआन
1: अच्छा हाँ रंजीत भाई हाँ। रंजीत भाई हाँ जौन एथी बेंजू बजाओ तनी उहो के बच्चे हैं
0: हाँ उहो के बच्चे बानी
1: हाँ पुचुन भाई किलाट वाला
0: उहो के साधु महात्मा के नजर में बच्चे बानी
1: हाँ ढोलक बजाओ तनी हुआ के
0: सब लोग बच्चा बा
1: आ हुआ कहो बानी रुदल बैठल बानी वहां के
0: उहो के बच्चे बानी
1: बाप रे बाप लइका ले से सयान ले बूढ़ से जवान ले साधु बाबा लोग के निगाह में सब लोग बच्चे हो
0: सब बच्चे हो
1: ए बाबा
0: हां
1: तब तो हमहु बच्चे लागो
0: तू औरी बच्चा बा
1: हमनी के साधु बाबा लोग के बच्चा जी आ हमनी के मेरे हरुआ साधु बाबा लोग के बच्ची
0: हाँ हाँ बच्ची बात सही कहला
1: सही बात है
0: हाँ सही बात है
1: हमनी के साधु बाबा लोग के बच्चा आ हमनी के मेरे हरुआ साधु बाबा लोग के बच्ची
0: हाँ
1: आई बाबा
0: का
1: आ तब तो हमनी के लइकवा रउआ सबनी के अंडा लागत होंगे
0: पागल कहीं के अब यहाँ से देखी धीरज भार राय पकड़ ले माने आ कहाँ जाता है ठूठी पाकर से राय धैले बने कैसे जा रहल बने आरे धैले त रही।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा और मधुबनी में बंद चीनी मिलों को चालू करने का हुआ फैसला। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार ने TRE-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। BPSC को भेजी गई अधियाचना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगा मतदान। और लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत रैयाम, दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बिहार खेल नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
2: बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके 4 पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस, व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है।
2: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30,17,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 97 करोड़ से अधिक की राशि की योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में आज 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने TRE-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: BPSC को भेजी अधियाचना के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक 3,847, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 3,877 पदों पर बहाली होगी। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए सबसे अधिक 16,101 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब आयोग जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 12 ने 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने राजस्व कार्यों में निर्देशों की अवहेलना और समयबद्ध सेवा देने में विफल रहे इन कर्मियों के विरुद्ध वेतन वृद्धि रोकने समेत विभिन्न दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषी अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 82 अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की सभी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 आदर्श मतदान केंद्र समेत 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 29 चलंत मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि मतदान के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं।
5: केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो मिले सीएपीएफ, वो 14 कंपनियां मिली हैं। इन सभी को बूथ में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहां पे एक बिल्डिंग में ज्यादा बूथ है उसमें जो जिला बल है वो भी लगाया जा रहा है। उसमें क्यू लगाने के लिए मतलब कतार लगाने के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोन बांटे गए हैं कि जहां पे भी कुछ घटना हो तो वो लोग पहले रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा भी विभिन्न चौक चौराहों पर और विभिन्न बिल्डिंग क्लस्टर पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
4: उपचुनाव में भाजपा, राजद और जन सुराज के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए के नीरज कुमार, राजद की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षा में अनुचित साधनों के मामले को शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया गया है। पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक संजय जायसवाल ने पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए कानून को विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और युवाओं को आश्वस्त करने के लिए यह विधेयक लाया है।
6: एक शब्द भी नहीं बता रहा है। अगर इन सुधारों में कुछ कमी है उन्हें बताना चाहिए ना। वो सुझाव दें कि नहीं इसके बदले ये काम हो तो हम काम कर सकते हैं। देखिए ये छात्रों का मुद्दा है, ये परीक्षा की पारदर्शिता का मुद्दा है। इसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार कोई कानून लाई है, आपको उसमें दिक्कत है तो आप बताओ ना भाई इससे अच्छा कानून कैसे लाया जा सकता है। हम सब समाहित करने को तैयार हैं।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इधर हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या इस बार 60 से अधिक होने की उम्मीद है। एनटीसीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या 54 थी। राज्य सरकार ने सीमांचल में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ से अधिक की चाय विकास योजना को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य में सहकारिता मॉडल के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और इसके प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में मत्स्य पालन परिवर्तन एवं निर्यात संभावना विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: बिहार की मछली को देश एवं विदेश के बाजारों तक पहुंचाना, उत्पादन और प्रोसेसिंग कोल्ड चेन तथा निर्यात व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं को संचालित कर रही है ताकि प्रत्येक मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता, सरल ऋण, बीमा सुरक्षा तथा आधुनिक तकनीकी का लाभ भी मिल सके।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, भभुआ और पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रदेश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शिक्षण कार्य में लापरवाही और अभद्र व्यवहार के कारण एक प्रधानाध्यापक समेत 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड के सर्वा उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार को छात्रों के साथ शराब और सिगरेट पार्टी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सुपौल के मरौना प्रखंड के अमरदास टोला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया और त्रिवेणीगंज प्रखंड में कार्यरत 2 विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अवधि में सोने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्बान बीघा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। सुपौल के वीरपुर के बनेली पट्टी में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी सावन कुमार ने 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद परिवहन विभाग को हस्तांतरण के लिए आदेश निर्गत किया है। यह राज्य का तीसरा ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा और मधुबनी में बंद चीनी मिलों को चालू करने का हुआ फैसला। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार ने TRE4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। BPSC को भेजी गई अधियाचना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगा मतदान। और लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हाँ देखा, हम ये रतनपुर शहर में आ गए बानी। आ यहाँ तक पहुँचने के बाद कौनो हमरे नजर में रास्ता नहीं खेलौकत, जे कौन रास्ता पकड़ के जाए। हे गुरु,
1: तू घबरा गईल?
0: हाँ
1: देखा, ये रतनपुर शहर है।
0: अच्छा,
1: चारू ओर से देखत बड़ा कटमासी लागल बा।
0: हाँ
1: तू रास्ता ना पैब, ना जा पैब। वो जा
0: कैसे जाए
1: हम बताओ तनी बुद्धि।
0: हाँ
1: वही तरह तू जाइब,
0: बताओ।
1: देखा एजा से तू बाएं तरफ के रास्ता पकड़ो।
0: हाँ
1: आ घूमत घामत चल जा।
0: अच्छा
1: जौन हो फुलवारी लौकता बागीचा।
0: हाँ
1: वही जा जाइ।
0: हाँ
1: ओजा सुंदर एक ठो पोखरा होई, ओ पोखरा के लगे बैठ जाइ।
0: हाँ
1: ओकरे बाद फेन तू हमरा के पुकारियो, हम फेन आके तरह के बता दे।
0: ठीक बा, वह रास्ता पकड़ के जाई।
1: हाँ वह
0: धनी है ये गुरु, लेकिन जहाँ जहाँ संकट पड़ी तहाँ तहाँ यही है जरूर।
1: हम एकदम तैयार बानी तहरा पर।
0: तब हम चल तनी यही रतनपुर शहर में। ए गुरु और आगे के बयान सुन लो। अरे धैल्य तो रही आए रामा,

0: हाँ सुनी, एक आगे के कहानी आप सबके छठवां भाग में मिली। आप सबके सुने के हमरे तरफ से नमस्कार बा।
1: तो श्रोता लोग, आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी, कैसन लागल जरूर बताई। 98527 88291 नंबर बांटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप खत लिख सकता नहीं, रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84 28 के पता पर। और हमके पता बाकी

कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं पैर छू के प्रणाम करता नहीं चलता नहीं अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत हंसत रही मुस्कुरात रही नमस्कार राम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: धक जिया करे जाने क्या पिया करे ओ धक धक जिया करे जाने क्या पिया करे।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।
12: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
13: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
12: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
13: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
12: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
15: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
13: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
12: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
13: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
12: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
13: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
12: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
13: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
12: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
13: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
12: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: दिल मेरे तू दीवाना है।
7: लो छोटे माले का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन व्यक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिकारी के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 दिन और बढ़ा दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान से संपर्क कर सकते हैं अथवा विज्ञापन संख्या CICT1-2026 का संदर्भ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा अपने विभिन्न शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upvetuniv.edu.in पर देखा जा सकता है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर उसे पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रभारी भर्ती कोष्ठ DUVASU मथुरा को 30 जुलाई 2026 तक अथवा उससे पहले भेज सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सहायक, कनिष्ठ निजी सहायक, अपर श्रेणी लिपिक और आशु लिपिकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा अहमदाबाद ने प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद, लेखा अधिकारी के 2 पद तथा क्रय एवं भंडार अधिकारी के 2 पद रिक्त हैं। संपूर्ण विवरण के लिए देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की वेबसाइट। इसके अतिरिक्त 25 से 31 जुलाई 2026 तक के रोजगार समाचार पत्र में भी इस विज्ञापन को देख सकते हैं। और फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली कार्यकारी सहायक महानिदेशक हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी देख सकते हैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.powerfoundation.org.in। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक प्रबंधक ट्रांसमिशन, सहायक प्रबंधक हाइड्रो, इन पदों से जुड़ी शर्तों के लिए भी आप देख सकते हैं वेबसाइट www.powerfoundation.org.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: सुनिए सुनिए सुनिए,
15: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
15: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
16: ऑलराइट।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 99393-65923।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
16: प्रसाद क्लिनिक,
17: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
16: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
17: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय

0: मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
11: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
11: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
11: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
16: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
17: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
18: ठक ठक।
19: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा मिला ही नहीं।
19: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
19: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, जिलाधिकारी ने जिला स्थापना शाखा का किया औचक निरीक्षण। श्रावण मास के मेला को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर का किया निरीक्षण। गुरुवार 30 जुलाई को मंगलपुर पुल पर आवागमन किया गया है बाधित। श्रम विभाग के धावा दल ने एक बाल श्रमिक को कराया विमुक्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय के स्थापना शाखा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप समाहर्ता संदीप कुमार और कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय की समग्र व्यवस्था, उपस्थिति पंजी, स्टॉक पंजी एवं विभिन्न संचिकाओं के रखरखाव का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संचिकाओं फाइलों को वर्षवार क्रमानुसार व्यवस्थित रखें ताकि अभिलेखों की उपलब्धता सुगम हो सके। कार्यालय के अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्रशासनिक गरिमा बनाए रखने के लिए सभी कर्मियों को औपचारिक वेशभूषा में ही कार्यालय आने तथा परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए। सदर एसडीएम के द्वारा धनेश्वर नाथ सिंहासनी श्रावणी मेला 2026 को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बैरिकेटिंग, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस, अग्निशमन व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां गुणवत्ता पूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। श्रावण के सोमवार के अवसर पर संभावित भीड़ को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार में अनिवार्य रूप से मेला परिसर में उपस्थित रहकर तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत रूप से ब्रीफ करने का भी निर्देश दिया गया। कल 30 जुलाई यानी गुरुवार को सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 6 घंटों के लिए मंगलपुर विष्णुपुर हाई लेवल आरसीसी पुल को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य के चलते सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। थावे प्रखंड के प्यारेपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। जिलाधिकारी ने इसको संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस मामले में जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। श्रम संसाधन विभाग ने प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अंतर्गत गठित बाल श्रम विमुक्ति धावा दल के माध्यम से आज थावे मंदिर परिसर में मां स्वीट चाट कॉर्नर एवं मिष्ठान भंडार में छापेमारी की। यहां से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। उक्त धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी थावे, सिधवलिया, माझा और गोपालगंज सदर के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी शामिल थे। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल 3,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया है और आगे इसमें संस्थान पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 113 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब और बियर को जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने फुलवरिया थाना क्षेत्र के बालेपुर गांव में की, जहां प्रमिला देवी के कस्बे वाले पुराने एक रूम के कमरे से यह शराब की कंसाइनमेंट जब्त की गई। इस मामले में प्रतिमा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह 62 वर्ष की महिला है और स्वर्गीय राम नरेश सिंह की पत्नी बताई जा रही है। बालेपुर थाना फुलवरिया की निवासी है। इसके साथ ही सुविंदर सिंह को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया परंतु यह फरार हो गया है। यह अभी स्वर्गीय राम नरेश सिंह का पुत्र है। इसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। यह बालेपुर फुलवरिया का ही निवासी है। इन्हीं लोगों के एक मकान से पुलिस ने 113 लीटर विदेशी शराब, बियर और देशी शराब को जब्त किया है। गोपालगंज के साधु चौक के पास पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष और चाकूबाजी हो गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में भी दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए। जमकर हंगामा हुआ और अस्पताल परिसर में भी मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया। कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश हो रही है। इस मामले में गंभीर रूप से घायल एक युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है, दूसरे का सदर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल हुए दो युवकों में से एक की स्थिति गंभीर है और गोरखपुर में इनका इलाज चल रहा है। पुलिस के प्राथमिकी जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हुआ है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को भी पुलिस खंगाल रही है ताकि वारदात में शामिल सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिन से साधु चौक के पास मठिया गांव निवासी जय प्रकाश और राजा के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी बीच मंगलवार की देर रात दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए। जहां विशाल गिरी बीच बचाव के लिए पहुंचे थे तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर जख्मी कर दिया। इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो वहां भी अस्पताल परिसर में चाकू से हमला किया गया। इनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर जादोपुर क्षेत्र में भी जमीनी विवाद में मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हो गया जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। इनका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद परिजनों ने सदर हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया। मामला जादोपुर के सिहोरवा गांव का है। यहां भूमि विवाद को लेकर 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान नबी मियां पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। ये गंभीर रूप से जख्मी हैं और इनके बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि निजी जमीन पर मिट्टी गिराने को लेकर झगड़ा हुआ था और इस झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया और इसमें बुजुर्ग के सिर और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। जिस जमीन को लेकर विवाद था उसकी पैमाइश के लिए अगले दिन का समय भी प्रशासन ने तय किया था। इससे पहले यहां खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस ने अब इस मामले में भी पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर उचका गांव थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी का नाम साहेब हुसैन साई उर्फ मुन्ना साई है। यह उचका गांव के त्रिलोकपुर निवासी जहरुद्दीन साई का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इस पर आवश्यक धाराओं में केस दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी अपहरण कांड के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवजी पांडे पिता दीपा पांडे साकिन सहुली थाना हुसैनगंज जिला सिवान का निवासी है। इस पर 2016 में ही एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त परमा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। यह बैकुंठपुर के सिरसा मानपुर गांव के झिझरी ठाकुर का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 246 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा दुर्गा स्थान के पास छापेमारी की, जहां बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी से 246 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में पकड़े गए आरोपी दिनेश यादव बेतिया जिला के शिकारपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया नरकटियागंज गांव का निवासी है और यह स्वर्गीय गौरी यादव का पुत्र बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर कहीं सप्लाई के लिए जा रहा था तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। इसकी बोलेरो गाड़ी और 246 लीटर शराब को भी जब्त किया गया है। नगर परिषद की खरीदारी में फिर से सवाल खड़े हुए हैं। नगर परिषद में वर्ष 2015 से 2022 के बीच डस्टबिन पोल लाइट और स्ट्रीट लाइट की खरीद में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। प्रकाश रंजन ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए सीधे अपने मोबाइल फोन से ही इस रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने जिला स्थापना शाखा का किया औचक निरीक्षण। श्रावण मास के मेला को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर का किया निरीक्षण। गुरुवार 30 जुलाई को मंगलपुर पुल पर आवागमन किया गया है बाधित। श्रम विभाग के धावा दल ने एक बाल श्रमिक को कराया विमुक्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
24: सुनिए सुनिए सुनिए,
25: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
24: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
25: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
24: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
26: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
27: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
2: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
28: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
29: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
28: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
29: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
28: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
29: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
0: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एम छिम 94.4 FM पे समय 9:22 हो रहा है हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277-16-65-96। ये नंबर तो आप सभी जानते ही हैं और जो भी श्रोतागण नए सुन रहे हैं उनके लिए मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7277-16-65-96। इस नंबर पे अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, तो घबराना ज़्यादा नहीं है। और एक एक करके गाने की फरमाइश पूरी की जाती है तो आप लोग तो समझते ही हैं कि एक बाद एक बजेगा ही, तो आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो आप लोग अभी टेक्स्ट मैसेज करें, जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे कि जब भी गाने की फरमाइश करेंगे तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे, ओल्ड इज़ गोल्ड या 90s की। तो यहाँ पर पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं। मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल है चल रे कंवरिया शिव के धाम सभी दोस्त के साथ, सविता चौहान भू छपरा से। और सबसे पहले आपको भाई और रोशनी बहन निशा जी, समीर जी और दिलीप जी और वीरेंद्र भाई को डेडिकेट करती हैं। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और क्या हाल है सर, मैं भी जुड़ गया हूं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते रेडियो एमझिम सभी दोस्तों को नमस्कार, और सोनू भाई आपको भी नमस्कार। आज मैं भी एक गाने के साथ जुड़ गया हूं, सावन का महीना आया है, घटा से वर्षा है पानी। ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मैडम जी के साथ सुनना है। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। राजेश प्रसाद जी सूरत गुजरात से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि आपको सुन रहा हूँ, तो बिल्कुल सुनते रहें। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार, नाम सगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं। तो सगीर जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और क्या हाल है। आगे मैसेज, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज कई आते जा रहे हैं, तो आगे बढ़े। आगे मैसेज लिखा गया है राजू कुमार मधुसरिया से, गुड नाइट। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपको बता दूं कि जब किसी से रात्रि में मिलते हैं तो नाइट का प्रयोग नहीं होता है, इवनिंग ही बोला जाता है, और विदा लेते वक्त नाइट बोला जाता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि हमारा मैसेज कहां गई। तो बिल्कुल आपका भी मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, मुझे गाना सुनना है, गाने का बोले बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाली शिल्पी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि देवकांत मिश्रा गणेश स्थान आया सावन झूम के। तो बिल्कुल आपको भी स्वागत है इस कार्यक्रम में देवकांत मिश्रा जी, आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और सविता चौहान के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने, चल रे कंवरिया शिव के धाम।

काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए तो आगे मैसेज भी हम शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा, हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे। आगे लिखा गया है कि थैंक्स भाई मुझे गाना सुनाने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मेरा गाना प्लीज़, तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी होगी। हेलो हाय, कैसे हैं आप सर? सॉन्ग हमरा बाबा हमरा सोना के ख्याल रखिए, तो इस गाने को हम नहीं सुनाएंगे, आप पुराने गाने का फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करेंगे मनीषा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग। मैसेज करते हैं रोहित जी। और चलिए आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा भी, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और लिखे हुए हैं, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल एक एक करके फरमाइश हम पूरी करेंगे ही। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग सिस्टर, थैंक्स मुझे सुनाने के लिए। मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल राजू जी, आपकी भी सॉन्ग बजेगा, ऐसा नहीं है कि हम आपकी सॉन्ग ना बजाए, सबकी फरमाइश पूरी करने की मेरा प्रयास रहता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने का बोल दिया गया है, सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हमारे श्रोतागण हैं राजेश प्रसाद जी, सूरत गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मिसेज कई पहुँचे हुए, लेकिन मिसेज को रोकेंगे। और आज हम फिर से आप सभी के बीच सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे, और आज चर्चा होगी डायरिया के बारे में, यानी दस्त एक ऐसी बीमारी है। डायरिया दस्त एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल होता है। इससे शरीर में पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण, हाइड्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं। बुजुर्गों के लिए यदि हम गंभीर कहते हैं, यदि समय पर उपचार ना मिले तो हम विशेष कर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर हो सकते हैं। कारण यह है कि दूषित भोजन या पानी का सेवन करना, बैक्टीरियल, वायरस या परजीवी का संक्रमण, गंदे हाथों से भोजन करना, बासी या खराब भोजन करना, भोजन का विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये सारे कारण हैं। इनके लक्षण हैं बार बार पतला या पानी जैसा मल होना, पेट में मरोड़ आना, दर्द होना, मतली जैसी मिजाज होना और उल्टी होना, बुखार कुछ मामलों में भी हो सकता है, कमजोरी और थकान महसूस करना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना, ये सारे लक्षण हैं। और कई मामलों में चक्कर आना भी इसमें शामिल है। इनकी जांच है डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर मल की जांच की जाती है। गंभीर मामलों में रक्त की भी जांच की जा सकती है। उपचार है इनके ORS का घोल बार बार पिलाए या पिए, नींबू पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और अन्य स्वच्छ तरल पदार्थ लें।

खुले में बिकने वाला अस्वच्छ भोजन ना खाए, खाने से बचे, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही खाए। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर उपचार ना मिले तो गंभीर निर्जलीकरण, हाइड्रेशन, शरीर में लवणों का असंतुलन और कमजोरी जैसी परिस्थिति, बेहोशी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में जान माल की खतरा हो सकती है। ये सारे इनके लक्षण और संभावित जटिलताएं और उपचार हैं। यदि आपको ऐसी परिस्थिति आपके शरीर में या आपके आस पड़ोस घड़े या किसी भी व्यक्ति को हो तो आप इसे उस व्यक्ति को साझा करें और उसको सलाह दें, या अपने घर में ही हो जाता है तो उसको अपने सलाह अनुसार उसको हॉस्पिटल में ले जाए, इसका उपचार कराए। यदि ऐसी परिस्थिति हम सभी के बीच आती है तो एक दूसरे को बताना चाहिए और उसे अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अपने को सुरक्षित स्वस्थ रख सके। ऐसी जानकारी हर रोज़ रेडियो रिमझिम पे दी जा रही है और हर कार्यक्रम में दी जाती है, तो आप इसका उपयोग करें अपने जीवन में। तो कुछ आगे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को भी हम शामिल करेंगे और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। फिलहाल पहला मैसेज अभी का पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, मैं गोपालगंज से राजीव नगर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं किशोर कुमार जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अब मेरी बारी, देख ले भाई मेरे सावन के गीतों का, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खखरिया रुकसोल नेपाल नेपाल बॉर्डर से, और कहते हैं कि हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हमें भी एक सावन की आगाज की आने पे एक सॉन्ग सुना दें। बिल्कुल सुनाएंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश तो पूरी हो ही रही है, सबको देखना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि रात के चांद आसमान में निकल आया, साथ में तारों की बारात लाया, जरा आसमान के तरफ देखो, आपको आपको प्यार का इजहार कर रहा है। सोनू भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ दिलोप्राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि हेलो हाय नमस्ते MD 97 दरभंगा भाजीपुर से, और प्लीज़, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़, तो बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं सिद्धार्थ जी बरौली से, बिल्कुल आप भी बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, तब्बू खान कुटवा से जुड़ी हैं और एक सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। बहुत दिन के बाद मैसेज पहुंचा हुआ है आपके द्वारा, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए, मैं गाना सुन रहा था, बिल्कुल आपको धन्यवाद है रेडियो MZM सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं। एक और मैसेज, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हाल है भैया जी, तो बिल्कुल बढ़िया है। और इस मैसेज को करते हैं सजदा अंसारी मीरगंज से, आगे बढ़ते हैं अगले गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं। आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं राजू जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, तेरी जवानी बड़ी मस्त। तो चलिए आपके भी गाने हम सभी सुनते हैं रेडियो MZM 94.4 FM पे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
4: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
8: हर

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो जिम 94.4 FM पे और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। अगली मैसेज पहुंचा, हेलो भाई रितु मिश्रा, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सर्कल का गाना बजाने के लिए, निशा पांडे मैसेज करते हैं। चलिए आपको धन्यवाद है और फिलहाल आज स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि तेरी जवानी बड़ी मस्त, नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती हैं शिल्पी और इनके तरफ से ही गाने की फरमाइश है और गाने का बोल है गुलरी के फुलवा। डेडिकेट रोशनी सिस्टर, शबीना सिस्टर, निशा भारती, बाकी सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज शामिल कर लें। आगे मैसेज, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, सुजीत कुमार प्रेम नगर बस्तरा राजा यूपी 63 मिर्जापुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि मैं आंसू को समझाया भारी महफिल में ना आया कर, आंसू बोला तुमको भरी महफिल में तन्हा पाते इसलिए तो चुपके से चले आते हैं, कमल की लाइन। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि प्लीज़, तो बिल्कुल लेके करके ये फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, एक एक करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।
1: कभी प्यारा भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे गुलरी के फुलवा बलम तूता हो गई ला। और इस गाने की फरमाइश की थी शिल्पी बित बिरमाश और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है बिन साजन झूला झूल मैं वादा कैसे भूल। और इस गाने की फरमाइश करती हैं तब्बू खान कुटवा से और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है इस तो पूरा करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि वाओ सुपर सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सॉरी किस बात की ये तो समझ में नहीं आया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे हम आगे गाने को प्ले करते हैं मैसेज पहुंचा है थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद रेडियो रामचंद्र सुनने के लिए। आगे भी सुनते रहें और इंजॉय करते रहें।

कमाल के सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे तीन साजन झूला छोलो। और आगे मैसेज कहीं पहुंचे हुए, आगे मैसेज लिखा गया है कि सुपर गाना बा भाई, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक यू सो मच। चलिए आपको धन्यवाद रेडियो एमसीएम सुनने के लिए, और आगे भी कार्यक्रम से जुड़िएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भाई हमार गीतवा अंतिम में रहेगा, तो चलिए अंतिम में ना ही सेकेंड लास्ट रावर ही गीतवा सुनाओ तनी। और एक मैसेज के पहुंचाए वाला बानी वीरेंद्र गुप्ता भैया, और डेडिकेट करे तनी ये गीत के पहले मैडम जी को, और शफाक हिना हजरा रोशनी शाबा दिलीप भाई, और आपको, और सबीना सविता निशा आशा गुड़िया और साझा खुशी ब्यूटी सोलोनी को। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं सावन को आने दो का टाइटल ट्रिक रेडियो एमसीएम 90.4 FM पर।

बिल्कुल, सावन तो कल से आ ही गए, अब जितने भी वादे किए हैं सारे निभाने पड़ेंगे भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे देवकांत मिश्रा जी की। और इन्हीं के नंबर से कई मैसेज पहुंचे हुए, रितु मिश्रा जी की तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ है, और एक ही स्थान से और भी लोग बैठे हुए हमें लगता है कि एक जगह और मैसेज कर रहे हैं अपने अपने नामों से। तो एक दिन में तो आप सभी के फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बहुत छोटा कार्यक्रम है, और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास अलग अलग जगहों से लोग मैसेज करते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि आज एक व्यक्ति सुन ले, और एक व्यक्ति कल, एक व्यक्ति तीसरे दिन, एक व्यक्ति चौथे दिन, ऐसे करके आप लोग फरमाइश करेंगे तो हम सुना सकते हैं। और एक दिन में सभी व्यक्तियों की फरमाइश एक स्थान से बैठ कर करते हैं तो नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि दूसरों को भी मौका देना है, और जो अलग स्थान से सुन रहे हैं उनको भी। तो आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति हम देवकांत मिश्रा जी जो हैं उनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, वो पहले ही मैसेज किए थे। तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ, और कार्यक्रम की भी समाप्ति का समय हो गया है, और समय से थोड़े हम आगे निकल गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब सुनते रहें रेडियो MCM 90.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Estado.
1: नौ आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.
2: All right. Hey, this is...

बनिया लुटेला साहूकार, डाणी मारे बनिया लुटेला साहूकार, साधु बनी बनी के घूमे ले ठगहार, कौनो बहु रुपया के झांसा में ना आई हा, झांसा में ना आई।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: गावे गावे माफिया बने है जा।
1: अच्छा जी।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: हमरा संग रहुआ चले ठीक है।
1: तू जो है आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रेंजर 90.4 एफएम में।
5: अस्सलाम वालेकुम मैम।
4: वालेकुम अस्सलाम,
5: मैं बोलता हूँ पठानपट्टी से।
4: कैसी हैं आप?
5: ठीक बने आप?
4: क्या होता अभी?
5: अभी खाना पका था।
4: अच्छा, नाश्ता हो भैल बा की
5: ना? नाश्ता हो भैल बा, अब दाल चावल बनी सब्जी रोटी बनने सवेरे लगा सलाम करे बजे। और सब ठीक बा? नाश्ता तो भैल मैडम।
4: हाँ हम लोग के हो गई बाबा।
5: जुमाला रिकॉर्डिंग आधे बाजल बना।
4: हाँ आधा बाजल हवे और थोड़ा सा बावे दो चार को कॉल तो अनाज बाज दे।
5: हमरो बाकी है बना। कल तो पाप हो गए बच भी है स्ट्रेस रे। मैम गाना बजे का बर्थडे वाला?
4: बर्थडे वाला सॉन्ग बता दी। केवल बर्थडे बावे?
5: बेटी के बर्थडे बा।
4: अच्छा, बेटी के का नाम है?
5: रोशन तारा।
4: अच्छा,
5: नया खुशी कहे लो स्कूल में नाम लिखा है रोशन तारा।
4: अच्छा जी, हम परिवार की तरफ से हुआ बच्ची के हार्दिक बधाई बा। पर ये कौन सा गाना सुने तो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजा दी का?
5: हाँ बजा दी बर्थडे वाला। नहीं के तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। वही वाला बजा दी।
4: अच्छा जी,
5: स्कूल गए लिए तो बोल के गए लिए मेरा आज बर्थडे गाना कही दो दिन हमारा गाना बाजे। बुध के दिन है?
4: बुध के हवे।
5: हाँ
4: अच्छा चली ठीक बा।
5: हाँ तो कौन आज कौन सो दिन बाज जाए ना तो फिर तो कल सब बजी बाजी की ना बाजी कौन ठीक नहीं के।
4: कहीं नहीं है
5: बोले कह दुनिया एक हफ्ता बाद देख लिया। ठीक बा। और सब ठीक बा?
4: और सब ठीक बा।
5: तो ठीक बानो गाना बाज जाए उदिन है?
4: हाँ हाँ बजा दे।
5: बजा दे गाना।
4: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
5: ठीक बा।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
1: अब मैम हमको सॉन्ग सुनना है आज।
0: जी बता दीजिए कौन सा।
1: इतिहास पिक्चर का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: इतिहास मूवी का कोई भी सॉन्ग।
1: जी
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट रहेगा?
1: पहले तो आपको अति मैम बोल रहे हैं ना, और जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में सुनना चाहता हूँ। हमारा नाम पड़ेगा ओम साई टेलर राघो जी बंजारी रोड पुलिस के सामने गोपालगंज।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: हेलो, भारती जी बोल रहे हैं क्या?
2: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
3: FM। जी मैं महाराज से जमुना प्रसाद बोल रहा हूँ।
2: जी
3: मुझे एक गाना सुनना था।
2: बता दीजिए।
3: वो जाने वाले भीना फिल्म का है, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, तो सुनवा दीजिएगा।

0: बिल्कुल, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
1: डेडिकेट रिमी परिवार को, आराध को भी, सुनील सोहरा को।
0: ओके
1: जी, और कब तक सुनाइएगा मैडम?
0: आपको ये सॉन्ग कल या आज सुनने को मिल जाएगा, मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच जो बजता है ना उसी में।
1: जी जी जी। और मैडम सबको इसे अच्छा है ना?
0: हाँ हाँ सर, सबको ही अच्छी है।
1: जी जी।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। जी मैडम।

0: हेलो
1: मैम
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए।
0: कौन सा गाना सुनना है
1: जी आज हमको? सुनवा दीजिएगा गाने के बोल है मैम।
0: बता दीजिए
1: जी, फिल्म जी का सुनवा दीजिएगा मैम। तू धरती में जाए कहाँ भी रहेगा, धड़कन से पहचान लूंगा। सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दो लोगों से, सभी दोस्तों के साथ मैं करें।
0: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में। जी नमस्ते,
6: क्या हाल है?
5: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक।
5: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
6: गाना सुनना था गीता था, किसे लिए
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: नमस्ते भाइयों, मैं
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 91.4 एफएम में।
0: मेरा नाम मोहम्मद वड़ा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, तो बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: गाना सुनना है दिल दीवाना ना जाने का खो गया, फ्रॉम द मूवी दाग द फायर।
1: ओके,
0: हमने खाना खा लिए?
1: हाँ हम खाना खा लिए हैं, आप खा लिए?
0: मैंने खाना भी खाना है, अभी नाश्ता करने।
1: अच्छा, अभी नाश्ता कर रहे हैं?
0: हाँ जी, मैं स्कॉटलैंड कंट्री ग्लास सिटी से बोल रहा
1: हूँ।
0: इंडिया में सब अरी है, मौसम कैसा है इंडिया?
1: हाँ, इधर मेरे तरफ तो अभी गर्मी है, धूप भी है।
0: ठीक है, स्कॉटलैंड ग्लास में अभी सर्दी है और ड्राई।
1: अच्छा,
0: भगवान आपको खुश रहे, तो मिले प्लीज वो गाना लगा देना दिल दीवाना ना जाने का खो गया।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंज में कॉल किया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: जी हम बनारस से रमजान।
6: जी क्या हाल चाल है?
5: हाल चाल तो बढ़िया है, आप सुनाइए।
6: मेरा भी ठीक है,
5: बस सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो रिमझिम को, अपन काम सब कर रहे हैं। ठीक हो गया तो मिलाए।
6: बता दीजिए गाना कौन सा सुनिए।
5: सुनवा दीजिए दिल आशिकाना का।
6: कौन सा सॉन्ग?
5: उसमें का वो वाला किसे दिल का दुश्मन समझते रहे।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
5: जी आपको जितनी श्रद्धा सभी को सुनवाते हैं, हम भी सुनेंगे।
6: ओके ओके, चलिए फिर गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए। हाँ, रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: मत रोना छोड़ के जाने वाले थी, मत रोना छोड़ के जाने वाले थी, खुद ऐसा वक्त निकाल लिया देना जो खुद ही मिलना है तुमसे ना मिलने की बहाने। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: सलाम नसीब ले तफरी सुल्तान डिस्ट्रिक्ट सिवान से।
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं और सब बढ़िया।
1: हाँ हाँ, नाश्ता हो गया है।
0: मैं तो बहुत दिन के बाद जुड़ा हूँ, काफी दिन हो गया था, तो आज मैं जुड़ा हूँ। आप भारती बोल रहे हैं? हाँ, मैं पहचान लिया। देखिए आप, हाँ रोनी जी तो शो कर लिया ना, फिर वैसे चॉइस।
1: हाँ अभी तो छुट्टी पे हैं तो हम ही कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, घर परिवार सब ठीक है?
1: सब कोई ठीक है।
0: दिल्ली आए हैं? कल दिल्ली आए।
1: जी,
0: कल मेरा पेपर है।
1: अच्छा,
0: पीएल कीर्तन लिस्ट दिन के सर नोएडा में पड़ा है, पेपर दे के दिल्ली में रुकना है।
1: अच्छा,
0: कल मेरा पेपर है। हाँ कल मेरा
1: पेपर
0: EEEE SBMTS जॉब के लिए, तो उसी कारण में भरा था। कल पेपर नोएडा
1: पड़ेगा।
0: हाँ तो कल ही आया दिल्ली, पेपर बोलते और सब बढ़िया था।
1: मैं
0: सुन भी नहीं पा रहा हूँ ना, टाइम नहीं मिलता। न्यू मतलब सुन नहीं पा रहा, सुनता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है।
1: अच्छा,
0: क्या बोल रही थी? कुछ बोल रही थी,
1: बोल रहे थे कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हाँ गाना हमको सुना दीजिए। फिल्म का नाम है इने किरा
1: और गाने का
0: नाम है आने से उठ जाएगा।
1: और सॉन्ग
0: हाँ, सबसे पहले आपको अजय रोनी, अजय सोनू भाई, अतरी सूर्या, परमीन हलीमा सादिया और रबीना, सफा सिद्धि, राजा रजदान तारी, सबनम सिद्दीकी, रुदार, निशा सुकुनवा, निशा भारती और समीर आलम, गुलाम हुसैन, दिलीप राम, अजान अंसारी सऊदी, सजीर आलम अंसारी, भाकर, बर्जू, उमर शंकर, दिगंदर, मुखेर, उधम सोनी, ये सबके साथ सुनना चाहता हूँ। और बता दीजिएगा। चलो आपसे बात करते हैं। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से।
5: हाँ जी, कैसे हैं आप?
6: अच्छे हैं, अपना सुनाइए।
5: हम भी अच्छे हैं।
6: क्या मौसम है बिहार?
5: अभी तो मेरे यहाँ गर्मी है, धूप भी है वैसे ही।
6: अच्छा, बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
5: नहीं, बारिश तो है।
6: इधर महाराष्ट्र में तो ठंडा मौसम है, हवा भी तेज चल रहा है और बारिश भी हो रहा है।
5: तब तो बढ़िया है, ठंडा मौसम
6: जिला के बहुत सुहाना मौसम
5: है। तब तो ठीक ही है।
6: तो भारती भी सुन रही है ना?
5: और
6: गाना, हाँ एक गाना सुना दीजिए, फूल और कांटे का।
5: गाने के बोल
6: लेंगे तो मिल जाएगा, ये गाने का बोल है। और डेडिकेट रहेगा सबसे पहले आपको रहेगा
5: जी,
6: सोनी मैन को रहेगा, संजय दुबे को रहेगा और जितना भी डिनर है रिंग सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
5: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
6: धन्यवाद, नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ज्योति साहू बोल रही हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैडम जी, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, खाना बन रहा है अभी तो।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है,
1: आइए आप खाइए खाना।
0: बिल्कुल, आप लोग खा लिए मतलब हम भी खा लिए।
1: अभी नहीं खाया, हम खाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी बना रहे हैं।
0: चलिए कोई नहीं, हम भी उसी टाइम खा लेंगे।
1: ठीक है, मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: बता दीजिए कौन सा
1: गाना ये है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
0: जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: आपको भी है मैडम जी, और हमारे पति को भी है, और भी जितने भी सुन रहे हैं उन सबके लिए आइए गाना।
0: जी बिल्कुल जी, चलिए फिर आपके गाने को प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हियर इन 90.4 FM में।
4: और हम अमर कुमार सोनभद्र से बोल रहे हैं, सॉन्ग सुनना था।
5: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
4: अरे लग गया, हम तो ट्राई कर रहे थे, कल नंबर हमने एक किया और आज हम ट्राई किया, आज हमारा लग गया कॉल। उधम बोल रहे हैं
5: जी,
4: आरती बोल रहे हैं।
5: भारती बोल रहे हैं।
4: अच्छा, चलिए मैंने ट्राई किया, आज देखिए हमारा कॉल लग गया। कुछ एक सॉन्ग सुना दीजिए।
5: बता दीजिए,
4: छेला बिहारी का है, नाचे कंवरिया सिद्ध के नगरिया बनके गुजरिया रे।
5: ओके, और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा।
4: डेडिकेट आपके लिए और पूरे जो रिमझिम रेडियो के श्रोता है सारे, कुछ दोस्त है संगम केसरी, आनंद केसरी, दोनों दोस्त लिए।
5: चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है
0: जी। नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
0: मुझे गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: भोले वाला गाना सुनना है। लेकिन गंगा जल शिवदेव जाएगा, भोलेनाथ से बम किस्वर पाएगा। ये गाने का बोले मैडम।
1: ओके, और
0: सबसे पहले तो आपको, बाकी जितने भी हमारे प्रेम जी रेडियो श्रोतागण है, सभी को सुनाना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोग सुनना चाहता है इस गाने को।
1: ओके जी, चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
6: मैडम
5: जी। नमस्कार
6: जी। मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है?
6: बस मैडम जी, बरसात हो रही है और रेडियो सुन रहे हैं।
5: अच्छा
6: जी, और दुकान पर ही हैं। दुकान है अपनी, सिलाई मशीन बेचते हैं, जैक चूल्हा बेचते हैं और थोड़ी बहुत सिलाई भी करते हैं।
5: अच्छा, अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनिएगा
6: जी? मैडम जी, पिक्चर का नाम है राजा हिंदुस्तानी।
5: और गाने के बोल?
6: गाने के बोल है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करे देखा।
5: सॉन्ग डेडिकेट है
6: जी सबसे पहले आपको है और अपनी एक मैडम जी है सोनी जी है, भारती जी है। आप कौन? भारती जी है? सोनी जी है?
5: भारती।
6: हाँ, तो आप दोनों को डेडिकेट है। हमारे गजरा सिंह लोधी जी हैं और मांगेलाल जी है और गोपाल ओझा जी है और जीतन दाखड़ जी है और हमारी मैडम ज्योति साहू जी के लिए गाना कैसे खासकर के लिए।
5: जी जी
6: जी,
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4।
6: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: मैं चिरमिरी कुवारा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान हूँ।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ।
1: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: फिल्म का नाम है जख्मी और गीत बोले जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, अजय गोरी चोरी चोरी अब तो रहा न जाए रे, गाय किशोर कुमार आशा भोसले, ये गीत है मैडम।
1: ओके, और कौन किसी को डेडिकेट है?
0: सबसे पहले गीत आपको, फिल्म निर्देशक आपको, पूरे भारत रजता को, रेडियो रिंझिम है मैडम, रेडियो रिंझिम सभी सभी दोस्तों भाई बहनों के स्टाफ कर्मचारियों को, पूरे भारत रजता को स्वामी के धन्यवाद। इसका प्रसारण कब होगा मैडम?
1: इसका प्रसारण आपको आज नहीं तो कल हो जाएगा।
0: कितने बजे?
1: शाम को 5 बजे से 7 बजे होता है और सुबह में 9 से 11 के बीच।
0: 9 से सुबह 9 बजे होता है?
1: सुबह में 9 से 11 के बीच होता है और शाम को 5 से 7 के बीच।
0: मतलब ये आज आज आएगा, 5 से की कल आएगा?
1: आज नहीं तो कल, दोनों में कभी भी आ सकता है।
0: जी जी, 5 बजे 9 बजे। ठीक ठीक,
1: रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: हेलो,
7: बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार,
8: गाना सुनना है।
7: बता दीजिए कौन सा।
8: अलग दिखला जाएगा राजा।
7: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है।
8: ओके,
7: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुन करिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग
1: विकास कुमार हिंसापुर।
0: हाँ जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: सब बारिश उरिश हो रहा है मैम?
0: बारिश नहीं हो रहा है इधर।
1: बारिश नहीं हो रहा है, धूप निकला है ना?
0: धूप भी है और गर्मी भी है।
1: हमारे तरफ तो नोएडा में बहुत बारिश हो रहा है।
0: अच्छा, थोड़ा इधर भी भेजिए ताकि हम लोग को भी राहत मिले।
1: भगवान के पास फोन करते हैं।
0: अच्छा कीजिए, देखिए लग जाए तो अच्छा ही है।
1: बोलते हैं कि भगवान चला जाइए गोपालगंज जिला में।
0: और सब ठीक है ना?
1: और सब बढ़िया मैडम, और सब बहुत मस्त है एकदम।
0: जी जी सब। चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनिएगा
1: आज? गाना सुनवाइएगा राखी का, वो पुराने सॉन्ग नहीं है।
0: गाने के बोल कुछ याद है?
1: इसे समझो ना।
0: अच्छा, इसे समझो ना रेशम की डोर भैया।
1: जी जी जी, बहुत बहुत प्यारा गाना है एकदम टीचर के लिए।
0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है।
1: लेकिन मैम एक बात बताऊं?
0: बताइए।
1: परदेश में रहता है ना तो कला बहुत, उस दिन बहुत याद आता है, बहुत
0: बहुत याद आता है जब रक्षाबंधन आता है, भैया घर पे ना हो।
1: लेकिन इस बार चले जाएंगे हम, एक दो दिन के लिए चले जाएंगे। टीचर के बोले टीचर से कि टीचर मेरी दो है, उन लोग को शादी हो गया
0: तो वो लोग आएंगे कि आपको जाना पड़ेगा?
1: हाँ, तो दोनों गाड़ी ले जाएंगे। चले जाओ नीचे, हम रेडियो रंगीन सुनने वाले हैं, उन लोग का सफर घुमाना चाहते हैं आपको। सबसे पहले आपको
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंगीन।
1: जी जी जी।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 8009994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाजत, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: Hello.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

अब आए भैया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहा थे सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अब लगा भी लीजिए।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: वीसीडी एंड कैसेट्स only on Chanda Cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।